फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 अगस्त 2026। सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज़्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील

0: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदाय के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व पर हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव से विश्वास करता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें से 320 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। करीब 50 अन्य भारतीयों से भी दोबारा संपर्क हो गया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 से खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होगी। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 2 दिनों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में भी आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के ठीक 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं सामूहिक स्वरों में ये देशगान।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। और लीजिए अब सुनिए वाणी जयराम के आवाज में ये कृष्ण भजन।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:25 हुए हैं। आइए अब हम आपको हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रम बता दें। तो पहले सुनिए हमारी सभा के शेष कार्यक्रम। अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 6:30 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर होगा भूपेंद्र सिंह का। भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम होगा सुबह 6:40 पर। दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह आप सुनेंगे आज सुबह 7:00। 7:05 पर आप सुनेंगे कृषिक संकेत कार्यक्रम में। सब्जी फसलों से जैविक कीट नियंत्रण इस विषय पर विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष त्रिपाठी से ये चर्चा। 7:20 पर आप सुनेंगे रेडियो पत्रिका कार्यक्रम गागर में सागर। संकलन व निर्माण होगा मासूम आलम का और संयोजन और प्रस्तुति होगी शुभ्रता यादव की। 7:50 पर आप सुनेंगे गीत और गजलों का कार्यक्रम संगीत सरिता।

8:15 पर आप सुनेंगे बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य। 8:35 पर बच्चों का कार्यक्रम होगा बाल सभा। आज सुबह 9 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बातें जंगल से। सुबह 10 बजे जिले की चिट्ठी हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 10:05 पर आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। सुबह 11 बजे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देश की जनता से मन की बात। 11:30 पर हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मन की बात के संस्कृत संस्करण का प्रसारण। दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। शाम 5 बजे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से इस घंटे की सुर्खियां। युवानी कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:02 पर जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 5:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूँ। 5:40 पर गीतों और गजलों का कार्यक्रम होगा संगीत सरिता। शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा सदाबहार गीत। 6:30 पर लोकरंग कार्यक्रम 7:20 पर। 7:30 पर हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत भारत और थाईलैंड के बीच खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल। रात 9 बजे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का जारी। तो ये थी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ।

राजा जनक की यज्ञशाला में शिव के जिस धनुष को रावण तथा बाणासुर जैसे जगत विजयी वीर हिला तक नहीं सके, उसे खंडित करने के लिए गुरु विश्वामित्र का आदेश पाकर श्री राम उठ खड़े हुए। इधर लक्ष्मण ने अग्रज को धनुष की ओर ताकते देखकर अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाकर दिक्पालों, कच्छप तथा शेषनाग और वराह को सावधान होकर पृथ्वी को दबाए रहने का आदेश दिया ताकि वो हिलने ना पाए। श्री राम धनुष के निकट पहुंचे। सबका संदेह और अज्ञान, अभिमानी तथा दुष्ट राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्व की क्रूरता, देवताओं की कातरता, सीता जी की सोच, राजा जनक का संशय, सभी मानो शिव जी के धनुष रूपी जलयान पर आकर सवार हो गए। लगा वो राम की भुजाओं के बल का सहारा पाकर भव सागर पार कर जाना चाहते हैं। श्री राम ने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और बड़ी सहजता से धनुष को उठा लिया। उसे उठाते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा कि एक भयंकर नाद के साथ वो दो खंडों में टूटकर पृथ्वी पर आ गिरा।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मूल्य विश्र गीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को फिल्म बैजू बाबरा में। गीत है शकील बदायूनी का और संगीत है नौशाद का।

और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म बाबरे नैन से। स्वर है राजकुमारी का, गीत है केदार शर्मा का और संगीत है रोशन का।

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: और लीजिए अब सुनिए चलती का नाम गाड़ी फिल्म का ये गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। गीत है मजरू सुल्तानपुरी का और संगीत है एसडी बर्मन का।
2: ये आप मुझे कहाँ ले आए?
3: ये आप बंद करो।
2: सॉरी
3: चौकी संभालो। क्या
2: मुर्गी?
3: हाँ पकड़ लो।

इस फिल्मी गीत के साथ ही भूले बिसरे गीतों का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य उज्बेकिस्तान देशस्य राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोयेव इत्यनेन सह द्वैपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ राष्ट्रपति प्रासादे व्यापार निवेशः, रक्षा, डिजिटल संपर्कः, ऊर्जा, शिक्षा, जनानां संबंधादिषु क्षेत्रेषु सहकारस्य समीक्षां करिष्यतः। अद्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वप्रथमं उज्बेकिस्तान देशस्य योग संघेन आयोजिते योग कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। ततः परं सः उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोयेव इत्यस्य प्रासादं गमिष्यति, यत्र उभौ द्वैपाक्षिकोपवेशनं करिष्यतः। बुधवासरे आगतायाः आकस्मिक जलाप्लावन दुर्घटनायाः अनन्तरं नेपालदेशे अद्य पर्यन्तं 80% यावत् भारतीयाः नागरिकाः रक्षिताः इति विदेशमन्त्रालयः अवदत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् पूर्वं सम्पर्करहितैः प्रायः 50 भारतीयैः सह पुनः सम्पर्कः स्थापितः। मन्त्रालयः अवदत् यत् 75-200 यावत् भारतीयाः नागरिकाः लुप्ताः इति कथ्यते। भारतीयमूलस्य प्रायः 28% यावत् जनाः अपि लुप्ताः सन्ति। स्थानीय प्रशासनस्य अनुसारं गतदिनेषु चीनदेशात् 98-500 यावत् भारतीयाः नागरिकाः नेपालदेशम् आगतवन्तः। अत्रान्तरे चीनदेशात् अद्यापि निर्गन्तुं 900 भारतीयाः नागरिकाः सुरक्षिताः सन्ति। बीजिंग नगरे भारतीय दूतावासः प्रत्यक्षतया अथवा स्थानीय प्रशासनस्य माध्यमेन सह तैः सह सम्पर्करतः अस्ति। मन्त्रालयः अग्रे अवदत् यत् भारत सर्वकारः जलाप्लावनेन पीडितानां शीघ्ररक्षणार्थं साहाय्यार्थं च नेपाली चीनी अधिकारिभिः सह निकट समन्वयेन कार्यं कुर्वन् अस्ति। विदेशमन्त्रालये 24-होरा नियन्त्रणकक्षः स्थापितः अस्ति, तथा च काठमाण्डु बीजिंग नगरयोः भारतीयदूतावासयोः सहायिका सेवाः प्रचलन्ति। अत्रान्तरे विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अवदत् यत् 11 टन भारयुक्तेन चतुर्थं विमानं C-130J हर्क्युलिस इति अद्य काठमाण्डुनगरं प्रति प्रस्थितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्य अस्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 37-तमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः, दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ताविभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च newsonair इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धौ भविष्यति। आकाशवाणी, दूरदर्शन वार्ता, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिन्दीभाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः क्षेत्रीयासु भाषासु अपि भविष्यति। भारत ऋतुविभागेन आगामि दिनद्वयोः ओडिशाराज्ये अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता। अद्य अरुणाचलप्रदेशस्य, असमराज्यस्य, मेघालयस्य, छत्तीसगढस्य, गांगेय पश्चिमबंगालस्य च केषुचित् स्थानेषु अपि प्रचण्डवृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविभागेन पूर्वानुमानं प्रकटितम्। अद्य बिहार, पूर्वी मध्यप्रदेश, पूर्वी उत्तरप्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, विदर्भ इत्येतेषु स्थानेषु अपि अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे थाईलैंड देशस्य विरुद्धं स्वस्य 20-प्रति-20 एशिया कप इत्यभियानस्य आरम्भं करिष्यति इति वार्ताः।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के ठीक 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह। सुबह सुबह कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज बात करते हैं हम विनम्रता की। विनम्रता जीवन का सुंदर गहना, विनम्रता जीवन का सुंदर गहना, इससे सीखें प्रेम से रहना। बड़ों का करे सदा सम्मान, छोटों से रखे मधुर मुस्कान। साथियों, विनम्रता एक सहज मानवीय गुण है। यह एक ऐसा गुण है जो न केवल मनुष्य की शारीरिक सुंदरता के अभाव को पूर्ण करता है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। विनम्रता और महानता सचमुच एक दूसरे के पर्याय हैं। महान व्यक्ति अनिवार्य रूप से विनम्र ही होगा, तभी तो वह महान है। ये संभव ही नहीं कि कोई व्यक्ति विनम्र भी ना हो और गुणविहीन भी। एक उदाहरण देकर हम आपको बताते हैं। मीना एक अत्यंत कुरूप लड़की थी, किंतु विनम्रता में उसका कोई सानी नहीं था। उसकी बातचीत की शैली इतनी सुंदर और मुग्ध कर देने वाली थी कि उससे बात करते समय उसकी कुरूपता का एहसास ही नहीं होता था। उसके नम्र और सौम्य व्यवहार ने सबका मन मोह लिया था। साथियों, ये तो बात रही एक कहानी की। हमारी सामाजिक जीवन शैली में विनम्रता के माध्यम से कई कठिन और दुष्कर लगने वाले कार्य भी बड़ी आसानी व सहजता से संपन्न हो

व्यक्ति का कुछ खर्च नहीं होता, उल्टे अन्य लोगों के मध्य सहज ही आदर और स्नेह प्राप्त कर लेता है। किसी की भावनाओं के प्रति सम्मान प्रकट करना, यथासंभव सहायता करना और संवेदनशीलता के साथ लोगों के दुख दर्द से जुड़ना आदि विनम्रता द्वारा ही संभव है। एक और बात है कि विनम्रता हमारा स्वयं से परिचय कराती है। साथियों, विनम्रता मनुष्य का एक बहुत ही सुंदर गुण है। विनम्र व्यक्ति हमेशा दूसरों का सम्मान करता है और सभी से प्रेम तथा मधुरता से बात करता है। वह अपनी सफलता पर घमंड कभी नहीं करता और दूसरों की भावनाओं का आदर करता है। हमें अपने से बड़ों का सम्मान, छोटों से स्नेह और सभी के साथ नम्रता से व्यवहार करना चाहिए। सच्ची विनम्रता हमें एक अच्छा इंसान बनाती है और जीवन में प्रेम, शांति और खुशियाँ देती है। और अंत में इतना ही कि आओ आज यही ठाने हम सबसे प्रेम से बात करेंगे, मीठे बोलों की प्यारी धुन से हर रिश्ते को खुशहाल करेंगे। तो ये था हमारा कार्यक्रम सुबह सुबह। अब इस कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह, आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि संकेत। आज का विषय है सब्जी फसलों में जैविक कीट नियंत्रण, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी।
1: हमारे यहाँ टमाटर काफी रकवा है, टमाटर का, और आपका बैगन, मिर्च, प्याज और गोभी। पूरा साल हमारे जिले में गोभी की खेती किसान भाई कर रहे हैं, तो समय समय पे इनमें तमाम तरह की बीमारियां और कीड़ों का प्रकोप होता है, और इनके नियंत्रण के लिए किसान भाई बाजार से जो कीटनाशी हैं या फफूंदनाशी हैं उनको लेके आते हैं और बार बार उनका स्प्रे करते हैं, जिससे कीटनाशियों की जो एक तो प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो रहा है कीड़े और बीमारियों में, और साथ ही साथ कीटनाशी या फफूंदनाशी के अवशेष हमारी फसल के साथ रहते हैं, खासतौर से सब्जियों में जो सीधी खाई जाती है, तमाम तरह की हरी सब्जियाँ हैं इनमें सीधे मात्रा में ये दवा लंबे समय तक रहती है, और जब हम इसका सेवन करते हैं तो तमाम तरह की बीमारियाँ, उनकी विषाक्तता इसकी वजह से होती है। तो जहाँ भी हम किसान भाई जब सब्जी की हमने प्लानिंग की है, सब्जियाँ लगाई हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि हम सब्जियों में ड्रिप सिंचाई का उपयोग करें, जिससे बूंद बूंद करके पानी पौधों की जड़ों में गिरेगा, तो अनावश्यक खेत में खरपतवार नहीं उगेंगे, और खरपतवार नहीं होंगे तो श्रम की बचत होगी आपकी और कीड़े बीमारियां भी कम लगेंगे। नंबर दो कि जिस क्षेत्र में हमें सब्जी को लगाना है उस क्षेत्र की मिट्टी को हम गोबर की सड़ी खाद या केंचुआ की खाद या और भी कोई कंपोस्ट आपके पास है उसको खूब पर्याप्त मात्रा में, वैसे तो 10 टन कम से कम एक हेक्टेयर में डालना चाहिए, उतना नहीं है तो जो भी आपके पास उपलब्ध है उसको डालें। प्रति एकड़ 2 से 2.5 क्विंटल नीम की खली उस खेत में मिलाएं। ट्राइकोडर्मा विरिडी या स्यूडोमोनास, कोई भी एक जैविक फफूंदनाशी को आप 50 से 60 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद में 1 किलोग्राम मिला के 10-15 दिनों के लिए रख दें, और इसके बाद उसको खेत में उपयोग करें। एक जैविक कीटनाशी मेटाराइजम एनासोफिली, ये भूमिगत कीटों को, खासतौर से सफ़ेद ग्रब है या दीमक है या कटुआ इल्ली है या और भी कोई ज़मीन में रहने वाले ऐसे कीट हैं, उनको नियंत्रण करने के लिए एक जैविक कीटनाशी हमारे विश्वविद्यालय में उपलब्ध है, और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में भी अगर किसान भाई उसको लेना चाहते हैं तो वहाँ से मिल जाता है। इसकी 1 किलोग्राम मात्रा को हम ज़मीन में डालते हैं, जिससे ज़मीन की जो समस्याएँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जो हमने आपको बताया नीम की खली या ट्राइकोडर्मा, ये जितने भी भूमिगत फफूंद हैं उनको नष्ट करने में मददगार।

0: होता है। इसके बाद जब हम नर्सरी तैयार करें तो अच्छी हेल्दी नर्सरी तैयार करें, उसमें कूड़ा करकट ना हो, स्वस्थ पौधे तैयार करें और उनको लगाने से पहले, चाहे सीधा बीज हम बो रहे हैं तो उस बीज को, और या हमने पौध तैयार की है तो उस पौध की जड़ों को हम किसी भी एक फफूंदनाशी से उपचारित करें। ट्राइकोडर्मा उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ट्राइकोडर्मा से उपचार करें और उसके बाद पीएसबी कल्चर से उसको उपचार करें, जिससे उसकी जड़ों का अच्छा विकास होता है और उसके बाद उसको हम मेड़ बनाकर उसकी रोपाई करें और इसके बाद लगातार हम उनमें दवाओं के स्थान पर शुरुआत से ही, जैसा हमने बताया रस चूसक कीटों की समस्या अगर है, प्याज में अगर खासतौर से रस चूसक कीटों की समस्या थ्रिप्स की होती है, उसके लिए नीले रंग के चिपचिपे प्रपंच आते हैं, और सफेद मक्खी तथा माहू इसके लिए पीले रंग के चिपचिपे प्रपंच आते हैं, तो 50 से 60 चिपचिपे प्रपंचों को 10-10 फीट की दूरी पे हम खेत में फसल की ऊंचाई पर लगा दें, जिससे ये कीट है उनमें आकर्षित होकर उसमें चिपक जाते हैं और वो उनका प्रकोप हमारी फसलों में नहीं हो पाता। दूसरा, एक लाइट ट्रैप आते हैं, लाइट ट्रैप से करीब से हम 18 से 20 प्रकार के कीड़ों को हम निगरानी भी करते हैं और वो कंट्रोल भी करता है। तो एक लाइट ट्रैप एक किसान भाई लगा ले, उसकी कीमत 2 से 2500 रुपये है और वो लंबे समय तक 10 साल भी खराब नहीं होगा, तो उसको हम लाइट ट्रैप को लगाएं। इसके बाद जो जैविक कीटनाशी है, हमें रासायनिक दवाओं का उपयोग करना है, अंतिम विकल्प के तौर पे करना है, लेकिन जैविक कीटनाशी जैसे ब्यूबेरा बेसियाना, ये हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में मिल जाता है, एनपी वायरस है, इन कीटनाशियों का हम स्प्रे करें, नीम का तेल या नीम आधारित कोई भी कीटनाशी जो 1500 ppm के हैं उनका हम नियमित रूप से स्प्रे करें। गौमूत्र का स्प्रे कर सकते हैं, 10 लीटर पानी में 1 लीटर गौमूत्र मिला के हम हर अल्टरनेट स्प्रे 3-4 दिन में स्प्रे करते रहें, जिससे फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी और कीड़े मकोड़ों का प्रकोप।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि संकेत, विषय था सब्जी फसलों में जैविक कीट नियंत्रण और विशेषज्ञ थे डॉक्टर आशीष त्रिपाठी। सुबह के 7:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: रेनी सीजन को हम जरूर एंजॉय करें,
1: गर्मा गर्म पकौड़े खाएं,
0: लॉन्ग ड्राइव पर जाएं,
1: भीगते झूमते नाचे गाएं,
0: लेकिन बारिश के पानी को यूं ही बर्बाद न होने दें,
1: पानी की एक एक बूंद बचाएं।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चित्रकूट में अतिवृष्टि और मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लेंगे जायजा। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक आज से ओरछा में आयोजित। और प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश का सिलसिला बने रहने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम की 137वीं कड़ी में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उप मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही गुजरात के सभी बूथों पर पार्टी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और नागरिक प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे और उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, इसके अलावा मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाशने पर दोनों देश जोर देंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में आयोजित उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन उनके 3 दिवसीय दौरे का तीसरा और अंतिम दिन है। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल रीवा पहुंचकर चित्रकूट में अतिवृष्टि और मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा बैठक की। जानकारी दी गई कि चित्रकूट में लगातार हुई अतिवृष्टि के कारण मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हैं। प्रभावित नागरिकों के लिए आश्रय स्थलों पर ठहरने, भोजन एवं चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी राहत और बचाव कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि
2: सिमरावल नदी और मंदाकिनी नदी जो बारिश के कारण से सतना चित्रकूट के अंदर बाढ़ के हालात थोड़े गंभीर हुए, ऐसे में हमारी सभी प्रकार की रेस्क्यू टीम लगी और जिला प्रशासन ने दक्षता से अपना काम किया है। लगभग 700 लोगों को रेस्क्यू किया है। प्रमोद वन, विकास प्राधिकरण, मदन गोपाल, गायत्री पीठ, चित्रकूट में आश्रय स्थल बनाए, ऐसे बीर सिंहपुर, कोठी और सतना के अंदर अलग अलग 10 स्थानों पर आश्रय स्थल के आधार पर इनकी व्यवस्था की गई। लगभग 6000 ज्यादा फूड पैकेट बांटे हैं।
0: वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सतना जिले के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुसलमानों को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास रखता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कल भोपाल में कहा कि मध्य प्रदेश में 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए हॉकी फीडर सेंटर शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फीडर सेंटर में कम उम्र से ही बच्चों की खेल प्रतिभा को पहचान कर प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा। भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में आयोजित किए गए मैत्री हॉकी मैच पुरुष वर्ग में एमपी अकादमी ने भोपाल वंडर्स को 3-0 से हराया। वहीं महिला वर्ग में भोपाल टाइगर्स ने शूटआउट में रायसेन क्वीन को 3-2 से पराजित किया। वहीं इस अवसर पर अशोकनगर, बैतूल और छिंदवाड़ा में नशा मुक्ति अभियान के तहत संडे ऑन साइकिल रैली तथा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन आज किया जाएगा। इसके साथ ही कल पांडुर्णा में मेजर ध्यानचंद कप प्रतियोगिता और पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। इंदौर का 132 केवी पोलो ग्राउंड चंबल एक्स्ट्रा हाई टेंशन सब स्टेशन आज अपने 60 वर्ष पूरे कर रहा है। यह सब स्टेशन 30 अगस्त 1966 को ऊर्जीकृत हुआ था और इंदौर की विद्युत पारेषण व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बना। 6 दशकों में सब स्टेशन ने इंदौर के औद्योगिक विस्तार और शहरी विकास के साथ ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि पोलो ग्राउंड सब स्टेशन इंदौर की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति ने दो दिवसीय बैठक आज से निवाड़ी के ओरछा में प्रारंभ हो रही है। इस बैठक में राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के साथ पार्टी पदाधिकारियों और कार्य समिति सदस्य शामिल होंगे। पहले दिन इस बैठक में समरसता का संकल्प और विकसित भारत 2047 जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही संगठन को मजबूत करने, बूथ सशक्तिकरण और संगठन विस्तार पर मंथन होगा। बैठक के अंतिम दिन 31 अगस्त को सेवा संकल्प अभियान कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर भी चर्चा होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित कार्य समिति के सदस्य शामिल होंगे। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के खिलाफ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय अनुसार मैच रात 8:30 बजे शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी जबकि स्मृति मंधाना उप कप्तान होंगी। भारत इस प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे सफल टीम है जिसमें 5 में से 3 मैच जीते हैं। भोपाल नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर पर दी जा रही 6%

की विशेष छूट आज और कल जारी रहेगी। करदाताओं की इस सुविधा को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने आज अवकाश के दिन भी सभी जोन एवं वार्ड कार्यालय खुले रखने का निर्णय लिया है। करदाता निगम के किसी भी वार्ड कार्यालय में कर जमा करने के साथ ही निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगले तीन दिन तक बारिश का सिलसिला बने रहने की संभावना है। जबलपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, पांडुना, सतना, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, उमरिया, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में मौसम बदला रहेगा। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार प्रदेश के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दाब क्षेत्र और मानसून ट्रफ सक्रिय है। हालांकि मध्य प्रदेश में इस सिस्टम का ज्यादा प्रभाव नहीं है। यही वजह है कि प्रदेश के सभी जिलों में एक जैसी बारिश होने की संभावना नहीं है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत झाबुआ के राणापुर, इंदौर के जोन क्रमांक 18, डिंडौरी के गौरा कन्हारी और धार जिले के नालछा तथा अलीराजपुर समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिविरों का आयोजन किया गया। आगरमालवा जिला मुख्यालय पर श्रद्धा और उत्साह के साथ प्रजापत, गवली, भोई, जाटव आदि समाजजनों द्वारा भुजरिया पर्व मनाया गया। छिंदवाड़ा से आज मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत मथुरा वृंदावन तीर्थयात्रा के लिए विशेष ट्रेन रवाना की जाएगी और बैतूल में रक्षाबंधन पर्व के दूसरे दिन कल सदर में भुजरिया का त्यौहार पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने मन के विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चित्रकूट में अतिवृष्टि और मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक आज से ओरछा में और प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश का सिलसिला बने रहने की संभावना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रेडियो पत्रिका कार्यक्रम गागर में सागर। संकलन व निर्माण है मासूम आलम का।
1: गागर में सागर।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी सागर की साप्ताहिक पत्रिका गागर में सागर के एक और नए अंक के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेगमेंट सागर मंथन से।
1: सागर मंथन।
0: सागर मंथन के तहत इसमें सबसे पहली जानकारी है जिला अधिवक्ता संघ सागर के द्विवार्षिक चुनाव की। जिला अधिवक्ता संघ सागर के चुनावी प्रक्रिया के निर्वाचन अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री केपी दुबे जी ने इस चुनावी प्रक्रिया अधिवक्ता संघ के कार्यों एवं उद्देश्यों के बारे में आकाशवाणी सागर को बताया।
2: सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये चुनाव की प्रक्रिया कितने वर्षों में होती है और किस प्रकार से आपने इसकी तैयारी की?
3: ये वर्ष 1998 से पदों की संख्या बढ़ाई गई थी और इसकी अनुमति स्टेट बार काउंसिल से ली गई थी और उस समय में 2 साल का कार्यकाल किया गया था, तभी से ये लगातार चल रहा है। इसमें जो है जो नए पद जोड़े गए हैं उनमें जो है कोषाध्यक्ष जो है महिला के लिए आरक्षित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार पूरे इंडिया में इसको लागू किया गया है। 4 पुरुष कार्यकारिणी के 2 महिला कार्यकारिणी की महिला कार्यकारिणी के पद आरक्षित किए गए हैं। इस तरह जो 15 पद है समस्त पद 15।
2: इसका उद्देश्य क्या होता है?
3: इसका उद्देश्य है कि अधिवक्ताओं के हितों से संबंध जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं कार्यकारिणी जो है उनको आगे उठाएगी, उनका समाधान निकालेगी।

0: 26 अगस्त दिन बुधवार को हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की जयंती को बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ ईद मिलादुन नबी के रूप में मनाया गया। इस मौके पर चल समारोह के आयोजन के साथ साथ पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में नातें पढ़ी गईं। और साथ ही सभी की भलाई के लिए सामूहिक दुआ भी मांगी गई।
1: इस यौमे मीलाद पाक की बरकतों के सदके मुतफैल सबके जायज मकसदों में कामयाबी और कामरानी अता फरमा, जायज कारोबारों में बेशुमार बरकतें अता फरमा, रिस्क में वसअत अता फरमा। मेरे मौला, हम में जो बीमार हैं या जो मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हैं, उन सबको शिफाए कामिला आजिल अता फरमा। हम में जो परेशान हाल है, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बे औलाद है, इस मुबारक दिन के सदके व तुफैल परवरदिगार आलम उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। जो कर्जदार है, उन्हें कर्ज से निजात अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारे मुल्क हिंदुस्तान वतन भारत को, हमारे देश को खूब तरक्की अता फरमा। देश के अंदर अमन अमान का माहौल कायम दायम फरमा। देश में एकता और भाईचारगी कायम दायम फरमा। परवरदिगार आलम हम सबको नेक बना। परवरदिगार आलम हम सबको तेरे महबूब के मीलाद का सदका अता फरमा। उनके फ्यूज व बरकात से मालामाल होने की तौफीक अता फरमा।
0: इसके बाद अब जानकारी है ईद मिलादुन नबी और रक्षाबंधन पर्व पर आयोजित होने वाले कवि सम्मेलन और मुशायरे की। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन ईद मिलादुन नबी त्योहार और सर्व धर्म राखी बंधन के अवसर पर एकता समिति सागर द्वारा भगवानगंज सागर में कवि गोष्ठी का आयोजन 26 अगस्त दिन बुधवार की शाम में किया गया। इस कवि गोष्ठी में सागर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिनाम शायरों और कवियों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना एवं नाते पाक से की गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कवि नलिन निर्मल जैन जी ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की।
2: माँ सरस्वती से कामना है, साधना ही चाहता हूँ, तृप्ति लेकर क्या करूँ, मैं तुम्हारी गोद में पलता रहा पलता रहूँ।
0: इसके बाद शायर जनाब असगर पयाम जी ने नाते पाक पेश की। जब

0: इसके बाद अब है हमारा अगला सेगमेंट शिखर की ओर।
1: शिखर की ओर।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी सागर की साप्ताहिक पत्रिका गागर में सागर, इसके तहत आप सभी जानते हैं कि हम इसमें जनहितेशी जन उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम आपको एक बहुत ही उपयोगी जानकारी देने जा रहे हैं जो कि बिजली से संबंधित है। बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। आज के समय में जिस प्रकार से हवा पानी बहुत ही आवश्यक वस्तुओं में गिनी जाती है और कहा जाता है कि बिन पानी सब सून, इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, उसके बगैर भी हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ये बिजली आप तक कैसे पहुंचती है और इस बिजली का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, क्या सावधानियां हमें बरतना चाहिए, इस संबंध में आइए और भी बहुत कुछ जानकारी हम लेने जा रहे हैं श्री मयंक मरकाम जी से, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड तहसील बंडा के। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइएगा कि बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ से शुरुआत होती है।
3: सभी को नमस्कार। तो जैसा कि आपने पूछा, बिजली का जो प्रोडक्शन है, बिजली जो बनाई जाती है, जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो ये मेनली कोयले को जला के बनाई जाती है, जो कि 58% जो टोटल प्रोडक्शन होता है मध्य प्रदेश में। सबसे पहले तो कोयले को जला के हम उसकी मदद से जो भाप

0: बनती है उससे टरबाइन को घुमा के और उसकी सहायता से बिजली बनाई जाती है।
1: हम बात ये पूछना चाहते हैं कि लोग बिजली का इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते समय क्या सावधानी बरते हैं?
0: देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते समय सबसे पहले तो घरों में अर्थिंग सही होनी चाहिए। अगर घरों में अर्थिंग सही नहीं होगी तो आपको बिजली का झटका लग सकता है। आप चाहे कोई भी उपकरण यूज करें, कई बार ये खबर आती है कि करंट से घर के अंदर भी करंट से किसी की मृत्यु हो जाती है, उनको बहुत तेज झटका लगता है। तो उसका मेन कारण यही है कि उनके घर की अर्थिंग सही नहीं होती है। तो समय समय पर अपनी अर्थिंग सही करवाएं। और जो बिजली के जो तार हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं कि घरों में जो फिटिंग वगैरह होती है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो खासकर बरसात के समय में ये समस्या ज़्यादा होती है। तो इसके लिए सही तरीके के तार और केबल यूज़ करें और अर्थिंग अपने यहाँ की प्रॉपर रखें, जिससे कि उन्हें झटका या कोई दूसरी हानि ना हो। दूसरी बात, एक चीज़ और है कि खेतों में लोग ऐसे ही खुले तार छोड़ देते हैं फेंसिंग के नाम पे, या कभी कोई जानवर ना आ जाए इस तरीके के लिए, जो कि बहुत ही कई बार इंसानों के लिए भी जानलेवा साबित होता है। तो कृपया करके इस तरह खेतों में लाइन और तार जो है वो खुला ना छोड़ें, इससे भी बहुत ज़्यादा कई बार जनहानि भी हो जाती है और कई बार जानवरों की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बिजली का जो सदुपयोग है, ये आप सभी को पता है कि बिजली हमारे लिए कितनी आवश्यक होती है, लेकिन इसे बचाना भी हमारा ही कर्तव्य है। तो इसके लिए हम जहाँ पे हैं या जिस कमरे में नहीं है वहाँ के आप लाइट, पंखे, जो भी दूसरी चीज है वो बंद कर दें, या घर से बाहर जा रहे हैं तो आप सभी उपकरण अपने बंद कर दें, इससे भी बिजली बचाई जा सकती है। और इसके साथ ही अगर आप ये सब सावधानियां बरतेंगे तो आपका बिजली बिल भी इससे कम होगा। और आजकल देखा जा रहा है कि लोग बाग बिजली तो सभी को चाहिए, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इसके प्रति जागरूक हैं बिजली बचाने के लिए। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या होता है कि कुछ लोग बिजली चोरी भी बहुत करते हैं, जिससे क्या होता है कि कंपनियों को नुकसान होता है और गवर्नमेंट को भी इसका बहुत नुकसान होता है। जो बिजली हम तक आती है उसमें ऑलरेडी वो कम से कम 5-10% लॉस में चली जाती है, लेकिन इसके बावजूद लोग बाग चोरी करके उस लॉस को और बढ़ा देते हैं। तो ये चीजें हमको समझनी होगी और हमें अपने देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ेगा। उसके लिए हमें बिजली की चोरी नहीं करनी चाहिए। बिजली चोर चोरी तो कर लेते हैं खुद के कुछ पैसे बचाने के लिए, लेकिन क्या होता है कि जो रेगुलर उपभोक्ता जो पेमेंट करता है उन पे उसका बर्डन आता है।
1: जो स्मार्ट मीटर है, क्या है इसके बारे में बताइएगा लोगों को।
0: देखिए, क्या है, स्मार्ट मीटर के प्रति लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि स्मार्ट मीटर फास्ट चलता है, लेकिन यह है कि स्मार्ट मीटर एक्यूरेट होता है, वो सेंसिटिव ज़्यादा होता है। और स्मार्ट मीटर की उसमें एक सुविधा ये है कि आप अपनी जो रीडिंग है वो ऑनलाइन आप ऐप के द्वारा चेक कर सकते हैं। उसमें अलग अलग टाइम बेस पे TOD फंक्शन है, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि सुबह 9-5 बजे अगर आप यूज़ करते हैं बिजली तो उसमें आपको रिबेट भी मिलता है, और शाम का टाइम चूंकि पीक आवर कहलाता है तो उस समय पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती है, मतलब अन्य समय की अपेक्षा सुबह और शाम की बिजली महंगी होती है। अगर आप दिन में उसको चलाएंगे तो आपको उसका रिबेट भी मिलता है। ये स्मार्ट मीटर में ही फंक्शन है, जो पुराने मीटर है उसमें ऐसा फंक्शन नहीं है। तो जो लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की भलाई के लिए है।
1: और देखिए, चलते चलते आप बिजली उपभोक्ताओं से या लोगों से क्या कहना चाहेंगे?
0: मेरा सभी से निवेदन यही है कि अपना बिजली बिल समय से भरें और बिजली की चोरी ना करें, बिजली का सदुपयोग करें। इसके साथ ही आगामी 12 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन है, तो जिनके भी चोरी के प्रकरण हैं या अन्य ऐसे कोई प्रकरण चल रहे हों तो वो 12 तारीख को आकर अपने प्रकरण का निपटारा जरूर कराएं। उसमें चूंकि छूट भी मिलती है तो ऐसे जो लंबित प्रकरण हैं वो जरूर उसका आप लोग लाभ उठाएं लोक अदालत का, और बिजली की बचत करें।
2: अब आते हैं अपने सेगमेंट सागर के मोती पर।
3: सागर के मोती।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी सागर की साप्ताहिक पत्रिका गागर में सागर, इसके तहत हमारा एक, आप सभी जानते हैं कि एक सेगमेंट होता है सागर के मोती। सागर के मोती में हम ऐसे प्रतिभाशील व्यक्तित्व से आपको मिलाते हैं जिन्होंने समाज के लिए, व्यक्तियों के लिए कुछ ऐसे काम किए हैं, या कुछ ऐसे हुनरमंद लोग हैं जिन्होंने कुछ ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिन्हें देखकर हमें लगता है कि शायद हम भी ऐसा कुछ कर पाएं। इसी तारतम्य में आज हमारे साथ हमसे जुड़ रहे हैं श्री अर्जुन कुर्मी जी, जो कि अधिवक्ता हैं जिला एवं सत्र न्यायालय सागर में। तो आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद सर, मैं बहुत आभारी हूँ।
1: तो अर्जुन जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आज आप हमारे श्रोताओं के लिए कौन सी हितेशी योजना के बारे में बताएंगे जिस पर आप काम कर रहे हैं?
4: जी, दरअसल एक अधिवक्ता होने के नाते और मानव होने के नाते मानवीय धर्म का पालन करते हुए जो हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं उनके तहत आम जनमानस तक हम कैसे अपनी मानवता का परिचय देते हुए उनको न्यायपालिका से सीधा साक्षात्कार कराएं, इसके लिए हम जो सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका विधायिका के द्वारा विधिक सहायता अभियान चलाए गए हैं जिसमें नालसा, सालसा, डालसा ऐसे करके जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएँ निर्मित करी गई हैं उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम लोगों को निशुल्क सहायता और जागरूकता, जो कि मात्र विधिक क्षेत्र में नहीं अपितु अन्य क्षेत्रों में भी जिनमें हम उनकी हर संभव सहायता कर सकते हैं, उसमें हम लोगों तक पहुंचकर उनके डोर टू डोर स्टेप करके उन्हें जागरूक करने का, उनको उनके अधिकारों से परिचय कराने का कार्य करते हैं।
1: आप ऐसा कार्य किन माध्यमों से करते हैं?
4: इसमें हम लोग ग्रामीण स्तर पर, नगर निकाय जो भी होते हैं उनके स्तर पर हम एक कैंप का आयोजन करते हैं, जिस कैंप में हम जाने के पहले 7 दिवस पूर्व उनको सूचित करते हैं कि जो भी गरीब, असमर्थ, असक्षम और जानकारी से अनभिज्ञ व्यक्ति हैं उनको एकत्र करने के लिए वहाँ के लोकल निकाय को हम जानकारी देते हैं कि हम कैंप लगाने आ रहे हैं, और इस संबंध में जो भी व्यक्ति जिस भी समस्या को लेकर हम तक आता है हम उन्हें उसी समस्या को पूर्ण जानकारी लेकर बिना भ्रमित किए उनकी समस्याओं को सुनकर उसके मुख्य जो इशू होते हैं उनको सामने लाकर उनकी कैसे वो उस पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं, कैसे वो उस पर न्याय प्राप्त कर सकते हैं, इसके सिलसिले में हम कैंप लगा रहे हैं।
1: किन किन क्षेत्रों में आप सहायता करते हैं?
4: ये हमारे कैंप मुख्य रूप से होते हैं किसी व्यक्ति विशेष को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उसे उसके कर्तव्यों के प्रति सजग करना कि हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है, मुख्य रूप से हमारी यही भूमिका होती है। उसके अतिरिक्त महिलाओं और बच्चों के अधिकार, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, घरेलू हिंसा, भूमि विवाद, श्रम कानून और अन्य कानून जो डालसा नालसा के द्वारा हमें प्रतिपादित किए जाते हैं कि इस संदर्भ में कार्य किया जाए, तो उन दिशा निर्देशों पर हम कार्य करते हैं।
1: इस प्रकार के कैंप आप कब से लगा रहे हैं?
4: ये अभी हाल ही में हमने शुरू किया है, लगभग 3 से 4 माह हो चुके हैं और हम 15 से 20 कैंप लगा चुके हैं जिनमें हमने लोकल सागर में और आसपास के ग्राम स्तरों पर जैसे कि गुड़ा, जैसे गड़ाकोटा, जैसे रोपऊ बरौदिया, जैसे जलंधर, इस तरीके से और भी अन्य स्तरों पर हमने कार्य किया है।
1: और इसमें पात्रता क्या होनी चाहिए?
4: इसमें हम 3 लेयर पे काम करते हैं। सबसे पहले हम बच्चों पे फोकस करते हैं, जो भी 12वीं से नीचे के छात्र हैं उनको जाके उनको बताना, उनको ये बताना कि कानून क्या होता है और कानून के प्रति आपके दायित्व क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं, संविधान में जो मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, मौलिक अधिकार बताए गए हैं, उनसे उनको जागरूक कराना, उनको शिक्षित करना और ये बताना कि एक जागरूक नागरिक को सक्रिय होना क्यों अनिवार्य है, इस संबंध में सबसे पहले हम उन्हें जानकारियां देते हैं और उनसे इस संबंध में प्रश्न उत्तर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के खेल कार्यक्रम आयोजित करके उनको हम बताते हैं कि कैसे वो इस मुख्य धारा से जुड़ें। फिर इसके बाद हम जो दूसरा कार्यक्रम करते हैं उसमें हम लोगों को जानकारी प्रोवाइड करते हैं, किसी भी व्यक्ति का कोई छोटा विवाद है, किसी का कोई बड़ा विवाद है, किसी कोई जानकारी से अनभिज्ञ है, किसी को कोई प्रक्रिया की जानकारी चाहिए, तो हम वो जानकारियाँ उन तक उपलब्ध कराते हैं। और तीसरा जो हमारा मुख्य होता है, जो व्यक्ति सक्षम है, अकिंचित है, अकिंचित यानी कि गरीब, जो व्यक्ति को पता नहीं है कि ये उनका अधिकार है या ये उनका हक है, जिसे वो मात्र कानूनी अनभिज्ञता के कारण क्लेम नहीं कर पाते, उस तक पहुंच नहीं पाते, तो उनकी समस्याएं को सुनकर दस्तावेज और अन्य तरीके से उनका पक्ष मजबूत करके नालसा, डालसा, सालसा इन तक हम वो दस्तावेज पहुंचाकर निशुल्क उनके तरफ से वाद मित्र के स्वरूप में जो मान्य उच्चतम न्यायालय के द्वारा नियुक्त अधिवक्तागण हैं उन तक हम पहुंचाते हैं, फिर वो माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करके, कोई भी अन्य प्रकरण हो उसमें प्रस्तुत करके उनको न्याय दिलाते हैं। और इसमें मूलभूत जो हमारे दस्तावेज होते हैं उसमें जो शोध करते हैं, तो केस शुरू होने से केस की समाप्ति तक जो भी शोध होता है वो शोध सारे बिंदुवार बनाते हुए उसको संकलित करके एडीआर तक पहुंचाते हैं।
2: और इसके बाद है सेगमेंट माटी की महक।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी सागर की साप्ताहिक पत्रिका गागर में सागर सेगमेंट ए में होत है माटी की महक। माटी की महक में हम ऐसे कलाकारों को लेके आते हैं जो हमारे सागर के आसपास तो रहते हैं और जो उनमें कला भी खीबई छिपी रहते हैं। मनु का है कला जो है उभर के सामने नहीं आ पाता, ऐसे उनको मंच नहीं मिलाते और जब मंच मिल जाते हैं तो उनको नाम भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ सानोदा से आई हैं जानकी अहिरवार जी, जो कि देखो लोकगीत गात हैं और इनसे हम बात कर हैं तो आपको अंदाजा हो जे है कि ये कितनी अच्छी गायक हैं और गायक के साथ साथ इनसे बात भी हम करें। आपको ये कार्यक्रम में खीबई स्वागत है। हमें सबसे पहले तो आप जा बताओ कि देखो लोग क्या करते हैं कि कोनो कला में क्षेत्र में जाते कोनो देख के कोनो से सीख के, तो अपन ने कौन को देख के या लोकगीत की विधा सीखी?
1: नहीं, कोई से नहीं सीखी, हमने खुद अपने दिमाग से आइडिया कर।
0: अच्छा, तो अब जा बताओ कि आप पढ़े लिखे कहाँ तक हो?
1: छठवीं पढ़े हैं सर।
0: उसके बाद अपन पढ़े नहीं है?
1: नहीं, अब देहात को मामला है सो नहीं पढ़ पाया, मगर भजन गाते हैं।
0: तो भजन अपन कोनो की लिखे भाई गाते कि अपने मन से बना ली?
1: नहीं, से मन से बनाते हैं।
0: चलो तो एक आध भजन हो जाए।
1: दसोदा को गा रहे हैं कृष्ण भगवान को, वारो है रे गवारो है मुरलाल उमर को वारो है, अरे ले बस देओ चले रे गोकल खो, ले बस देओ चले गोकल खो, अलना मेरे गवारो है मुरलाल उमर को वारो है, दूध पियात मेरे मारी पूतना, दूध पियात मेरे मारी पूतना, होली में गवारो है मुरलाल उमर को वारो है।
0: खीबई सुरीलो जा भजन। अच्छा, अबे तक अपन कहाँ कहाँ गावे गए?
1: अबे हम ऐसे तो कहूँ नहीं गाया, मनो अपने थोड़े फंक्शन में जैसे अपन कहा कर लगा था क्या वो पाल्टी आल्टी है कैसा क्या जो भजन मजन हो रहे हैं ऐसी जगह जात है, दादरी आदरी हो रहे हैं जहाँ कंता अंता में।
0: चलो तो देखो आपने एक भजन सुनाओ, अब काहे ने एक आध और हो जाए कौन बानगी?
1: ऐसी बजा दे जैसी ओदना बजाई थी, ऐसी बजा दे जैसी ओदना बजाई थी, काहे की मुरलिया कहाँ से मंगवाई थी, काहे की मुरलिया कहाँ से मंगवाई थी, कोना के लाला ने मदर बजाई थी, कोना के लाला ने मदर बजाई थी, ऐसी बजा दे जैसी ओदना बजाई थी, ऐसी बजा दे जैसी ओदना बजाई थी, काहे को पलना और कहाँ से बनाओ तो, काहे को पलना कहाँ से बनाओ तो, कोना के ललना को वो मैं झलाओ तो, कोना के ललना को ओ मैं झलाओ तो, ऐसी बजा दे जैसी ओदना बजाई थी, ऐसी बजाइयो जैसी ओदना बजाई थी।
0: जैसे देखो आप खुद मन से बनाते हो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो एक लाने धुन भी तैयार करने पड़ा थे, तो धुन के लाने कैसे दिमाग में आते धुन?
1: अब जैसो गाना चल है उसी धुन में हो जाए तो अपने मुँह में जैसे एक दो दार अपन ने गा लाए अपन ध्यान में हो जाता।
0: तो आप अकेले गाते हो कि मंडली के साथ भी गाते हो?
1: अब अकेली थोड़ी गा, तो मंडली हो था जब दो चार जने बैठा थे।
0: चलो तो एक आध भजन हो जाए।
1: गौरा जी को बता रहे हैं, सुना रहे हैं। अरे

0: कौन डाले सो है गजानन के कान, मैं कौन डाले सो है ईरा राता न जाड़े गजानन, हरे हरे हरी हरी दुआ में खड़े गजानन हरे हरे।
1: और अब अंत में है हमारा सेगमेंट इस सप्ताह चर्चा में।
2: इस सप्ताह चर्चा में
1: श्रोताओ, इस सप्ताह चर्चा में है हमारे पड़ोसी देश नेपाल में आई त्रासदी के बारे में। 26 अगस्त नेपाल के लिए एक भयावह दिन बनकर आया। फ्लैश फ्लड ने नेपाल में कुछ ही घंटों में जीवनदायिनी मोटेकोशी और त्रिशूली नदी की धाराओं ने गांव, पुल, सड़कें और कई जल विद्युत परियोजनाओं के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में जानो माल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। उफनते पानी और मलबे ने कई जिंदगियां खत्म कर दी, कई लोगों को बेघर कर दिया। विदेश मंत्रालय द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 अगस्त 2026 में नेपाल में आई बाढ़ के बाद लगभग 288 भारतीय नागरिक लापता हैं। इस आपदा में लगभग 359 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि हजारों लोगों के अभी भी लापता होने की जानकारी मिली है। ये हाल के वर्षों में नेपाल में आई सबसे बुरी आपदाओं में से एक है। इस भयावह त्रासदी पर भारत सरकार ने नेपाल को भरपूर मदद देने की घोषणा की है तथा वहां सहायता सामग्री भी पहुंचाई गई है। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आकाशवाणी सागर की साप्ताहिक पत्रिका गागर में सागर का ये अंक। इस कार्यक्रम से विदा होने से पहले आइए हम आपको बताते चलें, इस कार्यक्रम के संकलनकर्ता, निर्माण और वाचन स्वर मासूम आलम का। और इसी के साथ अब दीजिए इस कार्यक्रम से हमें अनुमति। नमस्कार।
2: गागर में सागर।
3: अभी आप सुन रहे थे रेडियो पत्रिका गागर में सागर। संकलन व निर्माण था मासूम आलम का। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है गीत और गजलों का कार्यक्रम संगीत सरिता। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अली हैदर के गाए कुछ गीत। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं ये गीत।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से गीत और गजलों का कार्यक्रम संगीत सरिता, और आज आप सुन रहे हैं अली हैदर के गाए कुछ गीत। तो लीजिए सुनिए ये गीत।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया, बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज्बेक

0: के प्रयासों से पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब दोनों देश मिलकर आने वाले समय में मौजूदा $1 बिलियन के कारोबार को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद यहां शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। PM सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है।
2: Every nation has a mission.
3: प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत दुनिया को विविधता में एकता का एहसास कराता है। हम एक हैं और विविधता के कारण एक रूपता सुशोभित है, इसलिए विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए।
2: So diversity has to be celebrated.
1: श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया है।
4: हमारी प्रतिबद्धता, हमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से किसी प्रकार को कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन काल में, जन्म से लेकर के उनके देहांत तक, जहां जहां जिन जिन स्थानों पर उनका स्पर्श हुआ, उस स्थान को तीर्थ का दर्जा किसने दिया है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्कॉलरशिप हो, प्रतिनिधित्व हो, संस्थान हो, हर स्थान पे यदि वाकई में सामाजिक न्याय बढ़ा है तो पिछले 12 वर्षों में बढ़ा है।
1: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दलित समुदाय के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये प्रतिक्रिया आई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला

0: मुगलिंग काठमांडू राजमार्ग फिर खोल दिया गया है। इस बीच नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रसुआ, नुवाकोट और धादिंग जिलों में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भोटे कोशी तिब्बत से निकलने वाली तेज बहाव वाली हिमालय से निकली नदी है। हाल ही में आई अचानक बाढ़ से रसुआ जिले में भारी तबाही हुई थी। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलापुझा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधा कृष्णन पत्थनमथिट्टा जिले में अरणमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। शाम को उपराष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्यटन सप्ताह के समापन समारोह की परेड को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मौजूदा 16 सितंबर की समय सीमा को 4 सप्ताह बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की निर्धारित तारीख 19 अक्टूबर को भी बदलने का अनुरोध किया है। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। नेपाल बाढ़ त्रासदी पर हिंदुस्तान ने लिखा है, भोटेकोशी नदी पर बनी नई झील में बढ़ रहा है पानी। अमर उजाला की सुर्खी है, जिंदगी बचाने का संघर्ष, भारत ने नेपाल के आग्रह पर भेजे 11 विशेषज्ञ। दैनिक भास्कर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को मुख पृष्ठ पर छापते हुए लिखता है, भारत में मुस्लिम नहीं होने चाहिए, ऐसा सोचने वाला हिंदू नहीं। पत्र ने कल जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची पर सुर्खी दी है, दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47,70,000 मतदाता बाहर, दावा आपत्ति 30 सितंबर तक। राजस्थान पत्रिका ने फोमो इकोनॉमी, दिखावे में गैर जरूरी चीजों पर भी खर्च करने की आदत को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, जरूरत नहीं, पीछे छूटने के डर से हो रही युवाओं की जेब ढीली। खरीदने से पहले खुद से पूछें 3 सवाल, क्या मुझे इसकी जरूरत है? अगर ये आज उपलब्ध नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदना चाहता? क्या मैं इसे अगले 7 दिन के बाद भी खरीदना चाहूंगा? सितारों से आगे देखने के लिए चिली में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, 260 फीट ऊंचा होगा गुंबद, 128 फीट का मुख्य लेंस, 2030 तक अंतरिक्ष में झांकने लगेगा टेलीस्कोप। नवभारत टाइम्स ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में हाई फैट, हाई शुगर,

0: ड्राई सॉल्ट या हाईली स्वीटेंड बेवरेज जैसी चेतावनी को पैकेट के ऊपर लाल चेतावनी वाले स्टिकर के रूप में छापने की खबर को प्रकाशित किया है। लोकसत्ता ने भी इस खबर पर लिखा है, FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अब दर्ज होगी चेतावनी, सावधान, इस पैकेट में नमक, शक्कर, तेल ज्यादा है।
1: धन्यवाद नवीन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं देशराज पटेरिया से ये झूला गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से कार्यक्रम लोक संगीत में कुछ झूला गीत। तो आइए सुनते हैं मैयादीन तिवारी से ये झूला गीत।

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागर।
2: वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य।
3: इस प्रोग्राम का ये अंक लेकर हम हाजिर हैं अपने श्रोताओं के लिए, और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी सी हस्ती मौजूद है। उनसे जानते हैं उनका परिचय।
4: मैं डॉक्टर पद्मा आचार्य एक्सीलेंस गर्ल्स कॉलेज में ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रोफेसर हूँ
3: जी। और आज हमने इस प्रोग्राम में आपको इसलिए बुलाया है कि एक अभिभावक के नाते हम जानना चाहते हैं कि आपने अपने बच्चों के लिए वात्सल्य को चुना, क्यों चुना?
4: पहले ग्वालियर में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी और मेरे बच्चे वहाँ पर सिंधिया स्कूल में पढ़ते थे। जब मेरा ट्रांसफर सागर हुआ तो उस समय मेरे सामने एक बड़ा प्रश्न था कि मैं अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाऊँ। मैंने जब यहाँ के लोगों से चर्चा की, किसी ने कहा नहीं वात्सल्य स्कूल बहुत अच्छी है, और वात्सल्य स्कूल जो है नाम से नहीं चल रही, काम से चल रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सागर में सर्वे किया हर स्कूल का
3: जी जी,
4: और सबसे लास्ट में मैं वात्सल्य स्कूल आई। और वात्सल्य स्कूल में आके मुझे वाकई में लगा कि ये स्कूल बहुत अच्छी है। जैसा उसका नाम है वात्सल्य, तो उसी अपनेपन से, आत्मीयता से, स्नेह से यहाँ के लोगों से मेरी मुलाकात हुई। प्राचार्य मैडम से बात हुई, स्टाफ से मुलाकात हुई, बच्चों को देखा, तो मुझे बड़ा अपीलिंग लगा कि मुझे अपने बच्चों को यही पढ़ाना चाहिए
3: जी। तो मैडम आपने बताया कि आपको अच्छा लगा और आपने सोचा यही पढ़ाना चाहिए। उसके बाद जब आपके बच्चे यहाँ
4: जी जी,
3: तो उन्हें कैसा लगा, उन्होंने भी अनुभव साझा किया?
4: मैडम मेरा यह सौभाग्य है कि इस वात्सल्य स्कूल में मेरे दोनों बेटे शाश्वत और शारद दत्त पढ़े हैं। मेरी बहू भी, अर्पिता भी इसी स्कूल की प्रोडक्ट है। और इस स्कूल की एक्टिविटीज में जब भी मैं आती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे एनुअल फंक्शन हो, चाहे पढ़ाई हो, हर फील्ड में यहाँ के स्कूल का बहुत कमांड था। मैं चूंकि ग्वालियर में 14 साल तक रही तो मैं देखती थी छोटी छोटी चीजें, डेको नहीं है वहाँ पर, कारपेट नहीं बिछा, यहाँ ये नहीं हुआ, पर इस स्कूल में मुझे हर छोटी चीज वो देखने मिली जो मैं ग्वालियर में देखती थी। तो बहुत अपीलिंग था ये। और यहाँ का जो स्टाफ था बच्चों से इतने प्रेम और स्नेह के साथ उन्हें पढ़ाता था कि बच्चों की जो पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए वो पर्सनैलिटी डेवलप हुई। और यही कारण है कि मेरे तीनों बच्चे, दोनों बेटे और बहू, आज बैंगलोर और दिल्ली जैसे शहरों में राइज कर रहे हैं और अपने स्कूल का, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं।
3: क्या बात है। हाँ देखिए, एक जुड़ाव की बात जो आपने की मैडम, तो हम देख रहे हैं कि आपके बच्चे बाहर चले गए, सब सेटल हो गए, लेकिन आपका जो जुड़ाव है वात्सल्य स्कूल के साथ वो अभी भी है, क्योंकि आज भी आप देखिए हमारे साथ वात्सल्य स्कूल में बैठी हैं। ऐसा क्यों है
4: मैडम? इसलिए कि इस स्कूल से बच्चों को तो एजुकेशन मिला, प्रेम मिला, स्नेह मिली, आत्मीयता मिली, परंतु इसके साथ साथ पेरेंट्स को भी हर बार इतना इन्वॉल्व किया जाता था कि मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कहीं इतना ज्यादा ना होता हो जितना इस स्कूल में होता है। मैं कोई भी प्रॉब्लम लेके यदि स्कूल में आई तो स्टाफ ने, प्रिंसिपल ने हमेशा हम लोगों की बातों को सुना। पेरेंट्स मीटिंग में भी यदि बच्चों से संबंधित प्रॉब्लम रखी तो उन्होंने हमेशा उसका हल निकालने की कोशिश की। तो जो प्रेम मिलना चाहिए कि बिल्कुल टाइटनेस नहीं थी, और पढ़ाया सब कुछ जाता था जो जरूरी था उनके लिए।
3: तो बच्चों के लिए जो जरूरी है वो सब यहाँ मिल रहा है वात्सल्य स्कूल में। ऐसे ही शब्दों के साथ आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, तो चलते चलते अब इस स्कूल के लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
4: मुझे बड़ा प्राउड है कि मेरे बच्चे इस स्कूल के प्रोडक्ट हैं, और इस स्कूल से निकले जो भी बच्चे हैं वो अलग अलग फील्ड में अपने कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। मेरी इस स्कूल के लिए शुभकामनाएं हैं कि यह स्कूल हमेशा ही इसी तरह से और आगे बढ़ता रहे और अपने प्रगति के आयामों को प्राप्त करता रहे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागर।
0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 8:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए बच्चों का मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा।

मौसमी हवाएं यही संदेशा लेकर आई हैं। आपकी दीदी आपसे मिलने आई हैं। स्वागत है अपने सभी नन्हे श्रोताओं का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा में, और सभी बच्चों को जय हिंद। प्यारे बच्चों, हमने कर ली है आपसे मुलाकात और हम आपसे करेंगे बहुत सारी बात। और सबसे पहले करते हैं हम, जी हाँ, हरी भरी वसुंधरा की बात। तो आइए यूं ही गुनगुनाते हुए हमारी प्रकृति को जानें।

0: प्यारे बच्चों, आप हैं कार्यक्रम बाल सभा में और मैं हूँ आपके साथ आपकी ऋतु दीदी। तो बच्चों, अब करते हैं बाल धमाल की बात। और बाल धमाल में आज हम अपने बच्चों से बात करेंगे कि बच्चों, आपके मन में भी कभी कोई ऐसा सवाल आया है जिसका जवाब आपको पता ना हो? आप सोचेंगे कि दीदी ये कैसा सवाल कर रही हैं। हाँ, सवाल ही तो करना है। तो बच्चों, सवाल करेंगे तभी तो उनके जवाब आपको मिलेंगे। और जवाब जानना चाहें तो सवाल करना बहुत ही ज़रूरी है। आसमां नीला क्यों दिखाई देता है? बारिश कैसे होती है? पेड़ हमें ऑक्सीजन कैसे देते हैं? चांद हमारे साथ कैसे चलता है? है ना? तो बच्चों, सवाल पूछना बहुत ही अच्छी बात है। दरअसल सवाल हमारी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं और जिज्ञासा हमें नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करती है। कई बार आप बच्चों को ऐसा भी लगता होगा ना कि आप सवाल पूछेंगे तो कोई आप पर हंसेगा या आपको डांटेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें किसी बात की जानकारी नहीं है तो बेझिझक होकर सवाल करें। आप बच्चे अपने माता पिता, शिक्षकों, बड़े भाई बहनों से सवाल पूछें, किताबों में जानकारी खोजें। याद रखिए, जो बच्चा सवाल करता है वह हर दिन कुछ नया सीखता है। हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश कीजिए और मन में आए सवालों को पूछिए। हो सकता है बच्चों कि आपका आज का एक छोटा सा सवाल कल की किसी बड़ी खोज की शुरुआत बन जाए। तो मुस्कुराते रहिए, सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए। बाल धमाल में इतना ही। और अब जी हाँ, रेडियो की पाठशाला।
1: तो बच्चों, ये है
2: रेडियो की पाठशाला।
0: बच्चों, रेडियो की पाठशाला में जानेंगे कुछ रोचक तथ्य। हाँ, रोचक बातें, क्योंकि दीदी आपके लिए हर बार नई नई बातें लेकर आती हैं। तो आज धरती पर जादू, जी हाँ, पृथ्वी पर कई अद्भुत और हैरान कर देने वाली रहस्यमयी जगहें हैं बच्चों। तो आइए जानते हैं कुछ

0: ऐसी ही जगहों के बारे में। बच्चों, मिरर ऑफ द स्काई बोलीविया में सलार दे उयूनी दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान यानी कि सॉल्ट फ्लैट है। बारिश के बाद इसकी सतह पर पानी भर जाता है और जम जाता है, जिससे यह एक विशाल प्राकृतिक आईने जैसा दिखाई देता है। इसे मिरर ऑफ द स्काई भी कहा जाता है। और अब सी ऑफ स्टार्स। बच्चों, मालदीव के वाधू द्वीप पर रात के समय समुद्र का पानी नीली रोशनी में चमकता है। इसे सी ऑफ स्टार्स कहा जाता है। यह दृश्य जैविक प्रकाश यानी कि बायोलोम इन एसेंस उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों यानी कि प्लैंकटन के कारण होता है। शायद आप बच्चों ने भी इसके बारे में कभी पढ़ा होगा। लेकिन कुछ नई नई बातें तो हम रेडियो की पाठशाला में आपके लिए लेकर आते ही हैं। और अब जानते हैं बच्चों कि कॉटन कैसल, हाँ नाम सुना आपने, शायद नहीं सुना होगा। पामुकले तुर्की में स्थित एक बेहद खूबसूरत और अनोखा प्राकृतिक स्थल है। इसे कॉटन कैसल यानी रुई का किला कहा जाता है। यहाँ सफेद रंग की सीढ़ी नुमा संरचनाएं प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं, जो ट्रेवटर्न चूना पत्थर से तैयार होती हैं। इनका निर्माण गर्म पानी के झरनों से निकलने वाले खनिजों के जमने से हुआ है। तो जाना आपने कॉटन कैसल कैसे बनता है। हाँ, और अब जानेंगे एयर्स रॉक। बच्चों, उलुरु ऑस्ट्रेलिया में स्थित बलुआ पत्थर की एक विशाल चट्टान है, जिसे एयर्स रॉक भी कहा जाता है। इसकी विशेषता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यह अपना रंग बदलती हुई दिखाई देती है। उस दौरान यह लाल, नारंगी और भूरे रंगों में नजर आती है। और अब फेरी सर्कल्स। जी हाँ बच्चों, नामीबिया के नामिब रेगिस्तान में हजारों की संख्या में रहस्यमयी गोलाकार पैच पाए जाते हैं, जिन्हें फेरी सर्कल्स कहा जाता है। ये सर्कल सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए हैं और दूर से देखने पर एक अनोखा प्राकृतिक पैटर्न बनाते हैं। और अब बात करेंगे क्रुक्ड फॉरेस्ट। पोलैंड में स्थित इस जंगल के पेड़ असामान्य रूप से मुड़े हुए हैं और सी आकार बनाते हैं। ये पेड़ वर्ष 1930 के आसपास लगाए गए थे। इनके मुड़ने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन देखने में ये सी आकार के दिखाई देते हैं और इसे नाम दिया गया है क्रुक्ड फॉरेस्ट। तो रेडियो की पाठशाला में आज बात इतनी ही। और अब जी हाँ, इंतजार है झांकी हिंदुस्तान की।
1: जो तुम्हें दिखाएं
2: झांकी हिंदुस्तान की।
0: तो बच्चों, झांकी हिंदुस्तान की में आज हम बात करेंगे कि बच्चों हर साल, जी हाँ, विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है बच्चों, इसे मनाने की जरूरत क्यों है, तो आइए आज जानते हैं। बच्चों, धरोहर का अर्थ है अमानत, सुरक्षित वस्तु, विरासत या किसी के पास विश्वासपूर्वक रखी गई वस्तु। नदियाँ, वन, पर्वत, ये हमारी प्राकृतिक धरोहरें हैं। रीति रिवाज, ज्ञान और भाषाएं हमारी अमूर्त धरोहरें हैं। और इनके अलावा ऐतिहासिक स्थल हमारे देश की ऐतिहासिक संपदा या धरोहर, जिसे कि आप हेरिटेज कहते हैं। इस तरह देश की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने, शिक्षा पर्यटन को बढ़ावा देने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास को सुरक्षित रखने और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बनाए रखने के लिए विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। बच्चों, इसकी शुरुआत कब हुई, आइए जानते हैं। वर्ष 1982 में अंतर्राष्ट्रीय स्मारक स्थल परिषद इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स ने 18 अप्रैल का दिन विश्व धरोहर दिवस के रूप में प्रस्तावित किया, जिसे कि एक वर्ष बाद 1983 में यूनेस्को की महासभा द्वारा स्वीकृत किया गया।

0: बच्चों, इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? विश्व धरोहर मनाने का उद्देश्य हमारी सांस्कृतिक विरासत, स्मारकों के महत्व और इन सभी के संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। भारत की ऐतिहासिक धरोहरें देश की समृद्ध संस्कृति और वास्तुकला को दर्शाती है। इनमें आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार, अजंता एलोरा की गुफाएं और हम्पी कर्नाटक सबसे प्रमुख हैं। ये स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं और अपनी ऐतिहासिक विशेषताओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। बच्चों, विश्व धरोहर दिवस को याद कर वर्ष 2026 की वैश्विक थीम संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवंत विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया है। भारत में जानकारी के अनुसार लगभग 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। बच्चों, इमारतें ही नहीं बल्कि कुंभ मेला और रामलीला जैसी परंपराएं भी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं। तो बच्चों, हम भी आज इन धरोहरों के बारे में जानें, समझें और अब विश्व विरासत स्थलों की रक्षा कैसे करें। बच्चों, ये बात भी जानने की है क्योंकि हमारे आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। हम अपने देश के स्मारकों और स्थलों का सम्मान करें, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे इस बात का भी ध्यान रखें और विरासत स्थलों के संरक्षण यानी उन्हें बचाने के लिए किए गए प्रयासों का समर्थन करें। तो आज झांकी हिंदुस्तान की में बात की हमने सहेजनी होंगी धरोहरें। और अब जी हाँ, हम जानते हैं कि बातें हो गई, रेडियो की पाठशाला की बात हुई, झांकी हिंदुस्तान की बात हुई, लेकिन इंतज़ार है बच्चों को कि आज बाबा के पिटारे में से क्या निकलेगा। तो आइए चलते हैं।
1: बच्चों, एक बार फिर से आ गए आपके बाबा। इस बार बाबा के पिटारे में है कहानी बंदर और सुगरी। बच्चों, बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे और बच्चों, जानवर भी मेहनत करते हैं अपने को हर मौसम से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। अपने है ना, छोटे छोटे से बच्चों को भी बारिश का मौसम हो या ठंड का मौसम या गर्मी, इन सभी मौसम से बचाने के लिए वो अपना घोंसला बनाते हैं। ऐसे ही एक जंगल में सुगरी नाम की चिड़िया थी। सुन लिया बच्चों चिड़िया को? तो वो चिड़िया क्या कर रही थी, तिनके तिनके उठा के लाती और एक पेड़ के ऊपर घोंसला बनाने की कोशिश कर रही थी। और एक था बच्चों नटखट शैतान बंदर।
2: पर बंदर भी कुछ कम नहीं।
1: बंदर चिड़िया से बोला,
3: अरे सुगरी, पागल हो गई है तू? इतने मौसम में अभी से ये क्या कर रही है, लंबा चौड़ा घोंसला बनाने में लगी हुई है।
4: तू तो खुद पागल है, पूरा पागल, पूरा पागल। कुछ नहीं बनाता, फिर देखना क्या होगा तेरा, मैं तो अपनी घोंसले में घुस जाऊंगी।
3: क्या बोल रही है तू? अरे अरे चल हट हट।
1: और बच्चू, इतने में क्या हुआ, रिमझिम रिमझिम रिमझिम रिमझिम रिमझिम बारिश की बूंदें पड़ने लगी, सारे जानवर यहाँ वहाँ भागने लगे। और जिन जिन जानवरों ने अपने लिए गुफा घोंसले तैयार कर लिए थे वो तो जाकर अपने घरों में छुप गए, लेकिन बंदर मामा अपने बड़े सियाने थे लेकिन गलती कर गए थे, तो वो पेड़ के यहाँ बैठे।
3: इतनी ठंड है, अरे मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ।
4: बड़े होशियार बने फिरते हो, मौसम से बचने के लिए तो घर ही नहीं बनाया।
1: मैं इस पेड़ के नीचे छुप जाता हूँ। अरे अरे अरे, इस पेड़ के नीचे भी नहीं बच पा रहा हूँ।

0: तू अपने काम से मतलब रखो, मेरी चिंता छोड़ दो।
1: ओ बच्चों, सुगरी शांत हो गई, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और हवाएं भी है ना बहुत तेज चल रही थी।
0: एकदम चुप हो जा, अपने काम से काम रख, बार बार फुसफुसाना बंद करो। ये ज्ञान की बात है, अपने पास रखो और बुद्धिमान बनने की कोशिश मत करो।
2: कम से कम एक घर बनाना सीख लेना। एक घर।
0: मैं इस पेड़ पर चढ़ता हूँ, भले मैं घर बनाना नहीं जानता लेकिन मुझे तोड़ना घर अच्छे से आता है। ये ले, ये कहते हैं घर, ये कहते। बच्चों, बहुत बुरा हुआ सुगरी बहन के साथ, बंदर मामा ने उसका पूरा घोंसला गुस्से में आके तहस नहस कर दिया। उसके बच्चे भी बाहर भीगने पे मजबूर हो गए बच्चों, और सुगरी बहन भी बहुत परेशान हो गई। बच्चों, ऐसे बहुत बार होता है कि मुसीबत में पड़े लोगों के लिए लोग मदद करने की जगह पर उन्हें नसीहत देने लगते हैं, उन्हें उनकी बुराइयों को बताने लगते हैं। लेकिन है ना बच्चों, बंदर मामा ने भी गलत किया और चिड़िया ने भी गलत किया। चिड़िया को बंदर मामा की थोड़ी बहुत मदद कर देनी थी और बंदर मामा को गुस्से में आके इतना बुरा कदम नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, हमें इंतजार रहेगा आपके खतों का। आप अपने पत्रों में जरूर लिखकर भेजें, हम आपके पत्रों को बाल सभा कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी लिखना। और बाबा तो ये चला।
3: अच्छी लगी ना कहानी? हाँ बच्चों, और अब बाबा के पिटारे की कहानी तो हमने बहुत ही अच्छे से सुनी, समझी, सीख ली। और अब जी हाँ, चलते हैं, कुछ गुनगुनाते हैं।

संजू, ए बिट्टू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ।

बातें तो बच्चों आपसे करने का मन हमारा भरता ही नहीं है, लेकिन टिक टिक करती हुई सुई इशारा कर रही है कि समय हो चला है अपने नन्हे श्रोताओं से अनुमति लेने का। तो इन्हीं दुआओं के साथ कि आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपनी ऋतु दीदी को कार्यक्रम बाल सभा से अनुमति दीजिए और आप सभी बच्चों को जय हिंद।

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम बातें जंगल से।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व।
2: बातें जंगल से।
1: इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच आ पहुंची हैं नील गाय। नील गाय जी नमस्कार, आपका स्वागत है। अपने बारे में कुछ बताएं हमें।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं नील गाय। भले ही मेरे नाम के आगे गाय लगा है, लेकिन वास्तव में एशियाई एंटीलोप हिरन कुल का मैं सबसे बड़ा सदस्य हूँ। नर नीलगाय नीला हल्का धूसरा होता है, इसलिए मुझे अंग्रेजी में ब्लू बुल भी कहा जाता है। मेरे सिर पर छोटे सींग होते हैं, जबकि मादा भूरे रंग की होती है, उसके सींग नहीं होते हैं। मेरा शरीर बहुत मजबूत और टांगे लंबी होती हैं, इसलिए मैं तेज गति से दौड़ सकता हूँ और उबड़-खाबड़ रास्तों पे आसानी से चल सकता हूँ। खास बात यह है कि मुझे अधिक घने जंगल में रहना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे खुले घास के मैदान, सूखी झाड़ियाँ, विरल वन जहाँ पेड़ कम हो, खुला क्षेत्र हो और खेतों के आसपास के इलाके पसंद हैं। भारत में मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कई अन्य राज्यों के खुले क्षेत्रों में पाई जाती हूँ। मैं बेहद संवेदनशील जानवर हूँ। लंबे समय तक मैं बिना पानी पिए भी रह सकती हूँ। मेरा स्वभाव बहुत ही शांत है, लेकिन खतरा महसूस होने पर मैं बहुत तेज गति से भाग सकती हूँ।

0: ये बताइए कि आपकी प्रकृति में भूमिका क्या है?
1: प्रकृति में महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं घास, झाड़ियों के पत्ते, कोमल टहनियाँ, फल और कई प्रकार के पौधे खाती हूँ, जिसमें खुले मैदान और झाड़ियों का संतुलन बना रहता है। अगर हम जैसे शाकाहारी जानवर ना हो तो कई जगह सूखी घास और झाड़ियाँ बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। इसके अलावा मैं अपने मल के माध्यम से कई जगह कई पेड़ पौधों के छोटे छोटे बीजों को दूर दूर तक ले जा सकती हूँ, जिससे नए पेड़ पौधे उग सकते हैं और प्रकृति का संतुलन बना रहता है। मैं शेर, बाघ, तेंदुआ, भेड़िए जैसे बड़े जीवों का भोजन का एक महत्व स्रोत हूँ। इस तरह पूरी खाद्य श्रृंखला का एक अहम हिस्सा हूँ।

0: ये जानने के इच्छुक हैं कि आपके लिए क्या बहुत बड़े बड़े खतरे हैं।
1: हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा हमारी प्राकृतिक आवास का लगातार कम होना है। जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जंगल, घास के मैदान, झाड़ियों वाले क्षेत्र कम होते जा रहे हैं, जिससे हमें भोजन, पानी, सुरक्षित रहने की जगह ढूंढने में कठिनाई होती है। फसलों की सुरक्षा के लिए कई जगह लोग खेतों के चारों ओर कटीले तार, बिजली की बागड़ लगा देते हैं, जिसमें फंसकर या करंट लगने से हमारे कई साथी घायल या अपनी जान गंवा देते हैं। इसके अलावा नई सड़कें और राजमार्गों के कारण तेज रफ्तार वाहनों से दुर्घटना भी बढ़ जाती है। पानी, प्राकृतिक स्रोतों का सूखना और जलवायु परिवर्तन भी हमारे जीवन में कठिनाई बना रहे हैं।

0: जी हाँ, अगर नील गाय प्रकृति से समाप्त हो जाए या कम हो जाए तो क्या असर पड़ेगा?
1: यदि हमारी संख्या बहुत कम हो जाएगी तो खुले घास के मैदान और झाड़ियों का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। सूखी घास और झाड़ियाँ बहुत अधिक बढ़ सकती हैं, जिसमें जंगल में आग लगने का भी खतरा बढ़ सकता है। हमारे कम होने से शेर, तेंदुआ, भेड़िया, अन्य शिकारी जीवों के भोजन की कमी आ जाएगी। तब भोजन की तलाश में गांव और बस्तियों की ओर बढ़ सकते हैं, जिससे मानव वन जीव संघर्ष बढ़ सकता है। याद रखिए, प्राकृतिक में हर जीव का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर जीव प्राकृतिक की एक विशाल इमारत की ईंट की तरह होता है। यदि एक भी ईंट हट जाए तो पूरी इमारत कमजोर होने लगती है।

0: बहुत सही कहा आपने। तो ऐसी अच्छी बातों के बीच हम जानना चाहते हैं कि आज आपका संदेश क्या है हम सबके लिए।
1: जी हाँ, हमारा संदेश है कि हम केवल फल नष्ट करने वाले जानवर ना मानकर देखें, हम भी प्राकृतिक की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमें जीने का अधिकार है। यदि हम जंगल, खुले घास के मैदान और प्राकृतिक आवास सुरक्षित रहेंगे तो हम खेतों की ओर जाने की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। किसानों को भी अपने खेतों की सुरक्षा के लिए कटीले तार या बिजली वाले तारों की वजह सुरक्षित वन्य जीव अनुकूल उपयोग अपनाने चाहिए। याद रखिए, आप सभी इंसानों की बस्तियां लगातार फैलती जा रही हैं, जो वन जीव के घरों छोटे होते जाते हैं, इसलिए हमें प्राकृतिक के साथ मिलकर रहने की आदत डालनी चाहिए। यदि हम जंगल, घास के मैदान और वन जीव की सुरक्षा करेंगे तो प्राकृतिक का संतुलन बना रहेगा, इंसान तथा वन जीव सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं।

0: जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद नील गाय जी। आज नील गाय की भूमिका में हमारे साथ रही
1: मैं श्रीमती मंजू ठाकुर बनपाल, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से।
0: और अब साहिबा को अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम से।

0: बातें
1: जंगल से।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बातें जंगल से। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। थोड़ी ही देर में विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे।

श्रेया घोषाल की आवाज में इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, से समीर ने लिखा था चित्रलोक कार्यक्रम में। अब आइए सुनते हैं तमाशा फिल्म का ये गीत।

अरिजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाजों में तमाशा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल के बोल थे, ए आर रहमान की तर्ज थी। चित्रलोक कार्यक्रम में एक और छोटा सा ब्रेक।

आज है इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ एनफर्स्ट डिसअपीयरेंसेस, बलपूर्वक गायब किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दिन ऐसे लोगों के लिए बड़ी गंभीरतापूर्वक सोचने और लापता हुए पीड़ितों को स्मरण करने और उनके परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त करने का दिवस है, जिन्हें जबरन उनके परिवारों से अलग कर दिया गया, जिनके बारे में परिवार आज भी सच्चाई और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये स्थिति मानवाधिकारों का सबसे क्रूर हनन है, जहां पीड़ित परिवारों को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर पल पल संघर्ष करना पड़ता है। आज का यह दिवस हमें इसी खामोश त्रासदी के खिलाफ आवाज उठाने और खड़े होने की प्रेरणा देता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य केवल इस दुख तकलीफ को याद करना ही नहीं, बल्कि इसके प्रति सामूहिक चेतना जागृत करना है। आइए आज हम इन लापता किए गए लोगों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करें और ऐसी घटनाओं के विरुद्ध आवाज उठाने का संकल्प लें।

अरिजीत सिंह की आवाज में छिछोरे फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे प्रीतम का संगीत था। सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म का ये गीत आपको अब सुनवा रहे हैं एक बार और। अरिजीत सिंह की आवाज है, कुमार के बोल है रोचक कोहली का संगीत।

0: सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में आप सुन रहे थे। कुमार ने इस गीत को लिखा था और रोचक कोहली ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: कहिए
2: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: आप सुन रहे थे चित्रलोक कार्यक्रम। अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

20 अगस्त सन 1921 को विभाजन पूर्व के रावलपिंडी में जन्मे शंकर दास केसरीलाल कालांतर में बने भारतीय सिनेमा के एक बेहद सफल और लोकप्रिय गीतकार शैले

शैलेंद्र का जन्म बेशक रावलपिंडी में हुआ, लेकिन वो पले बढ़े मथुरा में। हालांकि उनके पुरखों का घर आरा जिले के अख्तियारपुर में था। स्कूल के दिनों में शैलेंद्र की घनिष्ठता हो गई इंद्र बहादुर खरी से। मथुरा के उन दिनों में शैलेंद्र और इंद्र बहादुर रेलवे कॉलोनी के नजदीक मौजूद एक तालाब के किनारे की शिला पर बैठकर कविता रचना सीख रहे थे। बहरहाल समय ने करवट ली और सन 1947 के आसपास मुंबई के माटुंगा स्थित रेलवे वर्कशॉप में रोजी रोटी के लिए अप्रेंटिस के रूप में शैलेंद्र की नौकरी की शुरुआत हुई।

0: शैलेंद्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और इप्टा के एक सक्रिय सदस्य थे। उनकी कविताओं में जोश और जुनून था। मजदूरों, कामगारों, किसानों के लिए गहरा सरोकार। उन्हीं दिनों मुंबई में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शैलेंद्र ने अपनी एक मार्मिक कविता पढ़ी। राज कपूर भी मौजूद थे। शैलेंद्र की कविता ने राज कपूर पर गहरा असर डाला और उन्होंने शैलेंद्र से उनकी उस कविता को अपनी फिल्म आग में इस्तेमाल करने के लिए बात की। लेकिन शैलेंद्र उन दिनों सिनेमा के बहुत करीब नहीं थे। उन्होंने राज कपूर को कविता देने से मना कर दिया। आग के रूप में अपनी रचनात्मक प्रतिभा की अग्नि प्रज्वलित कर राज कपूर अब सिने प्रेमियों को भिगोना चाहते थे अपने निर्देशन की बरसात से। वो शायद 1949 का बरस था और शैलेंद्र पैसे की तंगी से गुजर रहे थे। हालात कुछ ऐसे थे कि शैलेंद्र को विवश होकर राज कपूर के पास जाना पड़ा। राज कपूर प्रतिभा के कद्रदान थे और गीतकार के रूप में जो हीरा शैलेंद्र के भीतर मौजूद था उसे उन्होंने परख लिया था। राज कपूर ने शैलेंद्र को फिल्म बरसात के दो गीत लिखने के लिए 500 रुपए दिए। उन गीतों में से एक था फिल्म बरसात का ये शीर्षक गीत।
1: बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में।

0: सब है।
1: शैलेंद्र भाषा के धनी थे, शब्द और भाव संपदा के सम्राट थे। शब्दों का उनका संधान ऐसा था कि बहुत सरल और साधारण शब्दों में भी वो असाधारण बात कहना जानते थे।

शैलेंद्र के गीतों में कभी प्रेम और विरह के कोमल भाव खिले उठते हैं, तो कभी उनकी गूंज एक नारे की तरह सुनाई पड़ती है जिसमें इस देश के आम आदमी की पीड़ा बोलती है। शैलेंद्र का अपने आसपास की दुनिया से, दुनिया के बदलते घटनाक्रम से, बदलते राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात से और उन हालात के असर से गहरा सरोकार था। शैलेंद्र के गीत हमारे स्नेही संगी साथी बन जाते हैं, हमसे हमारी पीड़ा और हमारे उल्लास को बांटते हैं, हमसे संवाद करते हैं।

आज हिंदी सिने गीतों का संसार बदल चुका है। कविता और गीत का धर्म शिल्प सब बदल चुका है और इसीलिए इस दौर के ज्यादातर गीतों की ध्वनियां स्मृति पटल से मिट जाती हैं। शैलेंद्र और उनके समकालीन गीतकार यदि आज भी लोकप्रिय हैं तो उसके पीछे एक गीतकार के रूप में न केवल उनकी कविता का सौंदर्य है बल्कि उनका सरोकार भी है। शैलेंद्र के फिल्मी गीत साहित्यिक गीतों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। आमो खास सबको पसंद हैं शैलेंद्र के सहज सुरीले सजीले गीत।

हालांकि गीतकार के रूप में शैलेंद्र का नाम राज कपूर, मुकेश, शंकर जयकिशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन शैलेंद्र की रचनात्मक प्रतिभा का वैविध्य और सौंदर्य अन्य संगीतकारों के सानिध्य में भी बेमिसाल बन पड़ा है। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार सचिन

शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्में और गीत हैं सन 1958 फिल्म यहूदी।

शैलेंद्र ने पाया सर्वश्रेष्ठ गीतकार का और मुकेश ने पाया सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म अनाड़ी।

1958 में लता जी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था वो भी शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। वो था फिल्म मधुमती का

इस फिल्म के निर्माण के दौरान शैलेंद्र को आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। शैलेंद्र सदमे से उबर नहीं पाए और 14 दिसंबर सन 1966 को 45 बरस की आयु में हमें अपने अनमोल गीतों की संपदा सौंप कर चले गए महायात्रा पर। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शैली शैलेंद्र ने उनके इस अधूरे गीत को पूरा किया।

0: शैलेंद्र के जाने के बाद उनकी फिल्म तीसरी कसम को 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कथाचित्र के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। गीतकार शैलेंद्र ने हमें वो गीत दिए जिन पर समय की धूल कभी नहीं जम पाएगी। उनके गीत जन गीत हैं, जन जन के होठों पर थिरकने वाले गीत, जन जन के हृदय में गूंजने वाले गीत, जिनमें हम खोजते हैं प्रेम, शांति, आनंद, खोजते हैं हाथ से छूटा हुआ बचपन, जवानी और बिछड़े हुए लोग।
1: बचपन के

0: आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। शोध, स्वर और आलेख कमल शर्मा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ है।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में एक बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: हाय

0: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आइए सुनते हैं जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार,
2: हरदा जिले में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला जेल में कैदी भाइयों और उनकी बहनों के बीच भावुक मुलाकात देखने को मिली। शुक्रवार को बड़ी संख्या में बहनें जेल पहुंची और भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर मिठाई खिलाई। इस दौरान कई कैदियों ने बहनों से भविष्य में अपराध से दूर रहने और जेल से बाहर निकलकर अच्छा नागरिक बनने का वादा किया। हरदा जिले में बीते 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय पर आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ और परेड की सलामी ली गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा रहे। विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं देशभक्ति प्रस्तुतियों से समारोह में उत्साह भर दिया। जिले भर में शासकीय कार्यालयों, विद्यालयों और सार्वजनिक संस्थानों में भी ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। जिले में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान 2026 का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत तिरंगा रैली, तिरंगा मैराथन और वंदे मातरम गान के साथ निबंध, रंगोली और वाहन रैलियों के आयोजन किए गए। हरदा के टिमरनी स्थित भाऊ साहब भुस्कटे महाविद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं के साथ सीधा ऑनलाइन संवाद प्रसारित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री डीडी उइके समेत जनप्रतिनिधि, अधिकारी और विद्यार्थी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि ओलंपिक के 20 से ज्यादा खेलों में भारत की भागीदारी नहीं है, ओलंपिक में भारत की इस भागीदारी को बढ़ाना होगा। 2036 ओलंपिक के लिए अभी से खिलाड़ी तैयार करें। केंद्रीय राज्य मंत्री डीडी उइके ने कहा कि युवा देश के भविष्य के साथ वर्तमान में भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। मध्य प्रदेश लेखक संघ की जिला इकाई की मासिक साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन बीते दिनों किसान भवन में किया गया। कार्यक्रम में जिले के कवियों और साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं की प्रस्तुति देकर साहित्यिक माहौल को समृद्ध किया। वहीं हरदा में संभाग स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसमें हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल जिले की टीमों ने हिस्सा लिया। हैंडबॉल, टेबल टेनिस और कुश्ती सहित विभिन्न खेलों में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं खेल की अन्य गतिविधियों में जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन अग्रवाल स्पोर्ट्स अकादमी में बीते दिनों किया गया, जिसमें 14, 17 और 19 आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने भाग लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का संभाग स्तर के लिए चयन किया गया। जिले में 25 से 31 अगस्त तक 7 दिवसीय संस्कृत सप्ताह महोत्सव मनाया जा रहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय हरदा में संस्कृत भाषा में प्रार्थना सभा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ इस सप्ताह का शुभारंभ किया गया। रहटगांव क्षेत्र में सोयाबीन फसल में राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट की संभावना को देखते हुए किसानों को कृषि सलाह जारी की गई है। किसानों से खेतों की नियमित निगरानी और प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने पर उचित फफूंदनाशी का उपयोग करने की अपील की गई है। हरदा के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में जन सुरक्षा युवा सृजन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत बीते दिनों की गई, जिसमें विद्यार्थियों को कानून, संविधान, साइबर सुरक्षा, महिला एवं बाल सुरक्षा, नशा मुक्ति और यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। हरदा जिले के गोराखाल जलप्रपात को मध्य प्रदेश के इको टूरिज्म स्थलों में शामिल किया गया है। बीते दिनों यहां जलप्रपात पर्यटन की सुरक्षा और प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण गतिविधि में जुड़े प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 23 और 24 जुलाई को आयोजित किए गए इस प्रशिक्षण में जल आधारित सुरक्षा, खोज बचाव, प्राथमिक उपचार, CPR और संवहनी पर्यटन जैसे विषय शामिल रहे। जिला पंचायत हरदा के सभागार में बीते दिनों नर्मदा संवाद जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नर्मदा संरक्षण, घाट संस्कृति, जैविक खेती, पौधरोपण और नर्मदा की सहायक नदियों के संरक्षण पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में पद्मश्री मोहन नागर सहित जनप्रतिनिधि, पर्यावरणविद और नर्मदा समग्र के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब बात करते हैं सांप्रदायिक सौहार्द की। जिले भर में ईद का पर्व हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। मुस्लिम समाज के जनों ने ईदगाह और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा कर देश, प्रदेश और जिले में सुख शांति और समृद्धि

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुनें।

0: नमस्कार श्रोताओं, हम हाजिर हैं आपका चहेता और पसंदीदा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने लेकर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर और आइए लेते हैं ये पहला कॉल।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: जी जी, चंद्रभान चौधरी बोल रहे हैं नानोनी से।
0: नानोनी कहाँ पे है
1: ये सर? अपना ये बांद्री से 7-8 किलोमीटर पूरब दिशा में, हाईवे से 3 किलोमीटर दूर।
0: अच्छा अच्छा, चंद्रभान भाई कुछ अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं आप नानोनी में?
1: जी सर, यही खेती किसानी और बिड़ी का काम करते रहते हैं।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, खूब मेहनत कर रहे हैं। पशुपालन भी करते हैं क्या आप?
1: पशुपालन नहीं है सर, लेकिन पहले माँ बाप थे तो उस टाइम पे तो ले लिए थे, तो रखते थे, और जब से वो गुजर गए तो जब से नहीं रखे।
0: अच्छा चंद्रभान भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मौसम जब बदलता है तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वो हमारे शरीर पर पड़ता है, तो अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर कैसे जागरूक हैं आप? क्या क्या करते हैं कि आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे सभी का?
1: यही सर कि अपन खान पीन का विशेष ध्यान रखें, जो ताजा खाएं।
0: हाँ हाँ,
1: क्योंकि अपन अगर सुबह का बना शाम या सुबह रात का बना सुबह खाएं तो वो अपने लिए शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है सर।
0: बिल्कुल, और चंद्रभान भाई इस मौसम में कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा निकलते हैं, एक काम और जरूर किया जाए कि खाने को ढक के रखा जाए।
1: हाँ सर, ये भी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप।
0: जी, अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है।
1: हाँ सर, हमारा जो घर है जो थोड़े जंगल के पास है, तो कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू ये निकलते ही रहते हैं।
0: ओ, तो आपको तो डर लगता नहीं होगा इनसे?
1: हाँ, ज्यादा डर तो नहीं लगता, क्योंकि अब अपन जो बरसात के टाइम में आते हैं तो उनको भगा देते हैं। अरे वो सर, एक टाइम तो हम लोग इधर अंदर बैठे थे, बहुत बड़ा जो काला सा रहता है।
0: हाँ,
1: वो बहुत बड़ा केकड़े की तरह एक वो निकल आया था घर के अंदर।
0: तो बताएं गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
1: जी सर, वो पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा,
0: कयामत से कयामत तक।
1: जी जी, आप सर कौन बोल रहे सर?
0: हम जय शेखर बोल रहे हैं।
1: जी जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको सर, धन्यवाद बहुत बहुत।
0: और सुनिए अपनी फरमाइश पर फिल्म कयामत से कयामत तक का ये गीत।
1: जी जी सर।

0: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या, कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
0: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
1: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
2: नमस्कार सर।
3: नमस्कार, फोन करेंगे सुने में स्वागत करते हैं आपका, अपना नाम बताएं।
2: कैलाश अहिरवार ग्राम कर हद से बोल रहे सर।
3: कैलाश अहिरवार
2: जी,
3: क्या करते हैं आप कैलाश भाई?
2: थोड़ी सी खेती किसानी है और उसी में काम वाम करते हैं।
3: सभी लोग साथ में मिलकर रहते हैं?
2: जी जी।
3: कैलाश भाई हमें ये बताएं कि सबके स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखते हैं आप, पूरे परिवार का?
2: आप पूरे परिवार का ऐसा है सर, क्या है अच्छे से साफ सफाई से रहते हैं सर। और अपने घर के आसपास साफ सफाई रखा।
3: बहुत ही बढ़िया। देखिए साफ सफाई एक ऐसी चीज है कि उससे 1,000 बीमारियां दूर हो जाती हैं। जी
2: टाइम से उठना सर।
3: हाँ,
2: और बढ़िया स्नान ध्यान मुन्ना कपड़ा धो के साफ सफाई से रहना सर।
3: और इस मौसम में अपनी आँखों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए।
2: जी सर।
3: क्योंकि आँखों में बहुत ज्यादा समस्या आती है
2: जी,
3: तो आँखों को भी साफ पानी से साफ करते रहना चाहिए।
2: जी जी।
3: बताएं कैलाश भाई, गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
2: सनम बेवफा का गाना सुनवा दीजिए सर।
3: कौन सा वाला?
2: कोई सा भी सुनवा दीजिए। ठीक है सर, नमस्कार।
3: नमस्कार, और सुनिए अपनी फरमाइश पर सनम बेवफा, इस फिल्म का ये गीत।
4: ओ हरे दुपट्टे वाले सीधी

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हेलो।
5: हाँ जी
4: नमस्कार, फोन करेंगे सुनने में स्वागत है आपका।
5: हम नेत्राम खुजर बोल रहे जी, कोठिया से।
4: नेत्राम भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, फोन करेंगे गीत सुनने में। तो नेत्राम हमें ये बताएं, करते क्या हैं आप वहाँ पे?
5: हम मोटर वायरिंग करते जी, वाटर सप्लाई चलाते हैं टंकी जी।
4: अच्छा अच्छा, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखते हैं जब मौसम बदलता है?
5: बस एंजॉय रखते हैं जी, मौसम में ऐसे ठंडी चीजें नहीं खाने।
4: हाँ,
5: और ऐसे ही करते रहे तो मैंने कहा ठंडी मंडी चीजें नहीं खानी चाहिए।
4: हाँ हाँ,
5: बरसात में ऐसी अपने स्वाद अच्छा रहता है।
4: बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हमें जरूरत है कि अपने खान पान पे ध्यान दें। बरसात के मौसम में कीड़े मकोड़े बहुत निकलते हैं।
5: हाँ जी,
4: उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है।
5: हाँ जी, और अपनी जाते गांव में नदी जी में नदी है, नदी से ऐसे गांव में जाते, गांव से दूर रहते हैं।
4: तो आपातकाल के लिए भी तैयार रहना चाहिए।
5: हाँ जी।
4: तो बताएं नेत्राम जी, किस फिल्म का गाना सुनना है आपको?
5: गोविंदा की सुरंदिया ने कोई गाना है, गोविंदा की।
4: गोविंदा का कोई भी?
5: हाँ जी।
4: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर गोविंदा पर पिक्चराइज ये गीत।
6: सर से सरक गई तेरी चुनरी हो,

0: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: नमस्कार, फोन करेंगे सुने में स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना।
4: शमशी बघेल, ग्राम राजगढ़, तहसील करेगा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर।
3: गांव का नाम क्या बताया?
4: राजगढ़।
3: राजगढ़
4: करेरा के पास में है।
3: अच्छा,
4: जैसे कर सर बात कर रहा है आप।
3: उत्तम सिंह जी, कुछ अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं आप अपने गांव में?
4: सर, खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन करते हैं।
3: ये बहुत ही बढ़िया काम है। हमारे जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं वो भी अक्सर यही बात दोहराते हैं कि किसी एक चीज पर निर्भर ना होकर खेती करते तो पशुपालन बड़ा सहज होता है, सरल हो जाता है खेती किसानी के साथ।
4: जी सर।
3: तो इससे जो हमें घाटे की भरपाई होती है वो बराबर हो जाती है। अच्छा, और इसमें गांव में जब आप रहते हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखते हैं आप?
4: बढ़िया सर, ताजा खाना खाते हैं, ऐसा नहीं कि बासा कुछ खाए तो बीमार हो जाते हैं।
3: हाँ, और बरसात का मौसम होता है तो खासतौर से हमारी आंखें बहुत जल्दी संक्रमित हो जाती हैं।
4: जी जी।
3: तो इसको भी प्रयास करें कि साफ सफाई रखें अपने शरीर की, अपने घर की, अपने घर के आसपास।
4: जी।
3: अगर हम साफ सफाई पे ध्यान दे देते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया बना रह सकता है।
4: जी जी जी।
3: और खाने के लिए तो बात बिल्कुल तय है कि हमें ताजा खाना चाहिए, उतना ही खाना बनाए जो उतने टाइम तक चल जाए।
4: जी जी।
3: उत्तम सिंह जी बताएं, गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
4: दोस्ताना का सुना दो सर।
3: कौन सा वाला?
4: गले चाहे दुश्मन जमाना, सलामत रहे दोस्ताना हमारा।
3: बहुत ही अच्छा लगा उत्तम जी आपसे बातचीत करके, और आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म दोस्ताना का ये गीत।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: हेलो, फोन करेंगे इस समय?
2: जी बिल्कुल, अपना नाम बताएं।
1: जी दिनेका से कादर खान बोल रहे हैं।
2: कादर खान, बहुत दिनों बाद फोन लगाया आपने।
1: जी सर, मैं बहुत दिन से वेट करते करते अभी मैं बैठा था तो मैंने लगाया।
2: क्या चल रहा है कादर भाई आपका?
1: ये साइकिल की दुकान है अपनी सर, तो उसी पे अभी बैठे हुए हैं। काम बरसात में कम चलता है थोड़ा। बैठे थोड़ा।
2: तो साइकिल किराए पे देते हैं कि साइकिल सुधारते हैं आप?
1: नहीं सुधारते सर, अब वो तो किराए वाला सिस्टम तो बंद हो गया है। हाँ पहले बहुत किराए से चलती थी, अब तो रिपेयरिंग करते।
2: तो हमें ये बताएं कादर भाई कि बरसात के मौसम में साइकिल का ध्यान कैसे रखना चाहिए?
1: जी सर, ये ध्यान ऐसे रखना चाहिए कि जैसे आप बरसात हो रही है तो उसको अपन अच्छी जगह सूखी जगह में रखें। पानी गिरता है तो उसको ऑयल लगा के रखे।
2: हाँ,
1: ज्यादा कीचड़ वगैरह में न चलाए।
2: हाँ हाँ सही,
1: यही देख देख करना पड़ता है।
2: और क्या होता है कि पानी भरा रहता है तो वो गड्ढे भी नहीं दिखते हैं, तो पता चला कि गड्ढे में गिर जाए तो रिम टेढ़ा हो जाता है।
1: जी जी, गड्ढों से भी बचाना चाहिए और बहुत गंदगी रहती है इस समय पे।
2: तो कादर भाई ये बात तो हो गई साइकिल को सुरक्षित रखने की।
1: जी
2: अब हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें, कैसे स्वस्थ रखें, इसके बारे में क्या कहना है आपका?
1: हम अपने आप को बहुत सी चीजों से रख सकते हैं, जैसे स्वस्थ रहना चाहिए, ताजा भोजन खाना चाहिए, बरसात में ज्यादा भीगना ना चाहिए, और आपने ये हिसाब से रहना चाहिए कि।
2: अच्छा, और कभी भी कोई दिक्कत आती है जैसे कीड़े मकोड़े भी काट लेते हैं, कई बार पता नहीं रहता कि किस कीड़े ने काटा, तो झाड़ फूक ना करवा के हम सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
1: जी जी हाँ, अस्पताल जाना चाहिए।
2: झाड़ फूक करने में या यहाँ वहाँ जाने में जो टाइम निकल जाता है वो टाइम गोल्डन पीरियड कहलाता है।
1: पहले तो अस्पताल जाना चाहिए,
2: तो वो व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है उस व्यक्ति की।
1: जी जी यही सर।
2: तो ये बात आप अपने गाँव में भी बोलिए।
1: जी सर, ये बोलते भी है, और क्या है कि उसमें लापरवाही करेंगे तो उसको अपन को खामजा भुगतना पड़ेगा।
2: हाँ, तो बताएं गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
1: गाना सर प्यार झुकता नहीं का कोई भी गाना सुना दीजिए।
2: सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।
3: तुम्हें

0: हेलो सर, नमस्ते सर।
1: नमस्कार, फोन करेंगी सुने में स्वागत करते हैं आपका। अपना नाम बताएं।
0: विक्रम पुरुषोत्तम साहब बोल रहे हैं सर, जरुआ खेड़ा से।
1: क्या करते हैं पुरुषोत्तम भाई आप जरुआ खेड़ा में?
0: सर हम टेलरिंग का काम करते हैं सर, टेलरिंग का काम सिला के काम करते हैं सर।
1: अच्छा अच्छा, दुकान कहाँ पर है जरुआ खेड़ा में आपकी?
0: सर मेरा जो है जरुआ खेड़ा में।
1: अच्छा अच्छा जी सर। पुरुषोत्तम जी बताएं, गाना कौन सा सुनना चाहे आपने?
0: सर गाना सुना सर, दी दर्दी प्यार में हम वो।
1: आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम जी आपकी फरमाइश पर फिल्म हिना का ये गीत।
0: जी सर, जी सर, आ रही सर।
1: नमस्कार।

0: हेलो सर, आसमानी
1: जी बिल्कुल, अपना नाम बताएं।
0: जी हम गणपत रायकवार बोल रहा सर, बले सर।
1: तो गणपत भाई क्या करते हैं बले में आप?
0: सर थोड़ी सी खेती है।
1: और पशुपालन?
0: जी सर, दो गाय रखे हैं। अभी तो उन्हीं के लिए चारा काट के आए हैं।
1: अरे वाह। अच्छा, चारा काटते समय बहुत ध्यान देना चाहिए, ये आपको पता होगा। क्या क्या सावधानी रखते हैं चारा काटते समय आप?
0: देख रेख चलना चाहिए।
1: हाँ, थोड़ा सा लकड़ी से आहट कर दे वहाँ पे आसपास।
0: जी सर।
1: आवाज करते रहें, गाना गाते रहें, तो अगर कोई कीड़ा मकोड़े जहरीले कीड़े हैं तो वो दूर हो जाएंगे।
0: जी सर। और गाते रहे और हल्ला कराते रहे।
1: हाँ, हल्ला करना जरूरी है वहाँ पे।
0: जी सर।
1: तो कितना चारा काट लाए आप?
0: 8-10 पूरा लाए हैं।
1: हाँ, इतना पर्याप्त है।
0: जी सर।
1: अब हमें ये बताएं गणपत भाई कि अपने स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करते हैं आप बरसात के मौसम में?
0: अब स्वास्थ्य के लिए सर यही है कि सुबह
1: हाँ
0: उठे तो अपने ना चलेगा सर का साइड सर।
1: हाँ हाँ।
0: और शाम में भी निकल जाता है रखो।
1: बहुत ही बढ़िया। और गणपत भाई क्या है कि देखो बरसात का मौसम चल रहा है तो कई बीमारियां संक्रमण ऐसे होते हैं जो बरसात के मौसम में जल्दी से हमारे ऊपर हमला करते हैं, तो प्रयास करें कि अपने शरीर की साफ सफाई पर ध्यान दें, अपने घर की साफ सफाई पर ध्यान दें, साथ ही गर्म और ताजा खाना खाने का प्रयास करें, और कभी भी अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाती है, शारीरिक समस्या आती है, तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मेडिकल या दुकान पर जाके कोई भी दवाई लेकर ना खाएं। गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
0: सर फूल और कांटे को सुनवा दे।
1: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म फूल और कांटे का ये गीत।

और श्रोताओं, अब आपको इंतजार है मुद्दे की बात का। मुद्दे की बात है नेत्रदान अवश्य करें, यही होगी हमारे मुद्दे की बात। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया था विनोद यादव ने, और इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपके इस दोस्त जय शेखर ने। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: The best of entertainment, information, education अब आपके एक उंगली के इशारे पर, कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: बड़ी बहू ये तुम्हारी ना
2: इतनी भी क्या जल्दी थी।
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना और ये
2: मेरी गुड़िया की ना।
3: दादी हाँ आपके नाम?
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो।
3: क्या
5: आरबीआई कहता है?
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
7: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
8: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
9: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं, देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं। इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है। साथियों कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था, आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं। उन्होंने आगे बताया यह आइडिया बहुत ही सिंपल है, आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा, मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
10: नमस्ते सर। नमस्ते
9: भाई। मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
10: धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
9: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
10: सर अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से उसके नजरिए से सिखाया जाता है और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
9: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी तीन लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
10: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा

0: इंट्रोड्यूस किया जाए।
1: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ, अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी तीन लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
0: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा